आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि। तदनुसार 1 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: विविध भारती जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल

0: का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना, UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 MHz पर ये FM सेंसिटिव चैनल है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
2: वंदन वार

आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस कान भाग 206, 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग एक। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। सुबह 7 से भोले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर त्रिवेणी 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज की फनकार। आज का सुबह का यह कार्यक्रम केंद्रित होगा ख्वाजा

हजरत अब्बास पर। सुबह 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के, कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मिथुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये पहला भाग सुनिएगा। 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली। इसके अंतर्गत सुनेगा कथा सुधा आभूषण का भाग एक, दूसरा सुनेगा वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, और इसके अंतर्गत सुनेगा उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का मुंगड़ी वाला मटर का निमोना, धनिया वाली मठी। शाम 4 बजे पिटारा में सेहतनामा, दांतों की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर जयेश शुगे से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:30 पर संध्या रंजन,

शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा 7:45 पर स्मृतियों के स्वर। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्रीमती अनीता वेस्ली पटेल से ममता सिंह की बातचीत। हवा महल में रात 8 बजे सुनिएगा प्रहसन इंटरव्यू। लेखन वी एम आनंद और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक। रात 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। रात 9:30 पर आज के फनकार। इसके अंतर्गत सुनिएगा अभिनेत्री नरगिस पर ये कार्यक्रम। रात का 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा। 10 बजे छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात। और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 206।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत के इतिहास को पलटे तो आप पाएंगे कि तबला इसमें पूरी चमक के साथ मौजूद है। इसलिए संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं आकाशवाणी परिवार।

0: के आत्मीय सदस्य और आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी जयंत पात्रीकर। सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कोई पूछे कि हमारे देश में रेडियो पर सबसे अधिक क्या सुना जाता है तो वो है संगीत, और उसमें भी फिल्म संगीत के सुनने वालों की बहुतायत है। हमारा सिने संगीत संस्कारित है शास्त्रीय संगीत से। सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला का आज शुभारंभ हो रहा है। हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र खासनीस जी को, जो आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार हैं, आला दर्जे के तबला वादक हैं और हमारे अपने हैं आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य। रविंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: इससे पहले कि हमारी चर्चा शुरू हो,
2: हाँ,
1: हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें कि आकाशवाणी में से किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आप आकाशवाणी में आए।
2: जी, मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा हूँ और मैंने तबला सीखने की शुरुआत जो है वो मेरे 6 साल के आयु में की है।
1: जी,
2: मैं शुरू में आकाशवाणी का चाइल्ड आर्टिस्ट था, उसके बाद में मैं आकाशवाणी का ही यूथ आर्टिस्ट बना।
1: क्या बात है।
2: और 1988 में मैंने यूपीएससी की एग्जाम देकर आकाशवाणी में मैं कार्यक्रम अधिशासी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मैं तो कई आकाशवाणी केंद्रों पर काम कर चुका हूँ महाराष्ट्र में।
1: जी,
2: क्योंकि संगीत से हमारा जुड़ाव था और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते आए थे संगीत की, तो आकाशवाणी में आने के बाद में मैंने आकाशवाणी की म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी। कहते हैं कि अगर आपने हुनर है तो वो हुनर दिखाने के लिए आकाशवाणी जैसा और कोई व्यासपीठ है नहीं। तो आकाशवाणी ने तो मुझे बचपन से ही बहुत कुछ दिया, और उसी में जब नौकरी करने आया तब मैंने आकाशवाणी में म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी और मैं प्रभु की कृपा से ग्रेड 1 म्यूजिक कंपोजर हूँ। कई सारे म्यूजिकल फीचर हमने आकाशवाणी के लिए किए, उसके बाद मैं आकाशवाणी के सॉन्ग ऑफ द मंथ में कई सारे गानों में संगीत दिया।
1: क्या बात।
2: और बहुत सारी रचनाएं आकाशवाणी के लिए की है, तो ये मेरा संगीत का जो बचपन से जो प्रवाह शुरू हुआ तो आज तक लगातार जारी है।
1: क्या बात है। तो आज हमारे अपने एक अधिकारी हैं मगर एक कलाकार के रूप में आज श्रोताओं के सामने हैं, हमारे बीच उपस्थित है आप, तो अपनी श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। फिल्म संगीत में, सिने संगीत में तबले का जो दौर है उसकी बात होगी और समय के अनुसार इसमें जो परिवर्तन आया है उस पर हम बात करेंगे।
2: जी,
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रविंद्र जी कि तबला ये जो वाद्य है इसका जन्म कैसे हुआ और इसके जन्म से जुड़ी कोई कहानी होगी तो उसके बारे में भी कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: हम लोग अगर हमारे पुराने स्कल्पचर देखते हैं
1: जी
2: तो उसमें ज्यादातर हमें यही दिखता है कि मृदुंग या पखावज
1: जी
2: ये वाद्य हमारे पास थे, और हमारे यहाँ पर ध्रुपद धमार गायकी होती थी।
1: जी जी।
2: फिर जब अकबर बादशाह के जमाने में ख्याल गायकी का विस्तार होने लगा तो उसमें ये होता था कि ख्याल का जो गायन है वो मृदु शैली में है और उसके ऊपर पखावज के बोल भारी पड़ते थे।
1: जी।
2: तो इसलिए शायद तबले के जन्म की कथा जो है वहां से शुरू ही हुई है। कहते हैं कि अमीर खुसरो साहब जो है उन्होंने पखावज को विभाजित किया, मतलब अच्छा, दो भागों में उसका विभाजन किया और उसका जो आकार है वो तबले का आकार उसका दिया।
1: जी।
2: तो बाया और दाया ऐसे उसके दो भाग हुए। और कहते हैं कि वो जब तोड़ा तब बोला।
1: हाँ।
2: तो तब बोला से वो तबला शब्द वहां से आया है। अब ये तो मतलब कहानी है, इस पर किसका कितना विश्वास होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तबला वाद्य जो है ये वाद्य दाया बाया दोनों का मिला हुआ वाद्य है
1: जी।
2: और उसने पखावज की तुलना में उसके जो

0: बंद बोल है वो ख्याल गायकी के लिए बहुत अच्छे उसके साथ में मिल गए
1: जी,
0: और इसलिए ख्याल गायन में तबला संगति का प्रचलन होने लगा।
1: पखावज के जो बोल होते हैं रविंद्र जी,
0: हाँ,
1: और तबले के बोल,
0: हाँ, हाँ,
1: इनमें अंतर क्या है?
0: वैसे पखावज जो है वो खुला वाद्य है
1: जी,
0: मतलब पखावज पे वो धा जो है वो

0: तो पखावज जो है वो खुला वाद्य है, उस पे खुले बोल बजते हैं।
1: जी जी।
0: अब पखावज का जो धा खुला बजता है वही धा तबले पर बंद है वो धा। तो तबले की जो बोल है वो बंद बोल है
1: जी,
0: और पखावज के खुले बोल
1: खुले है। बोल होते हैं।
0: वैसे शुरू में हमारे पास पखावज था तो पखावज का जो साहित्य था वो बहुत विपुल साहित्य है पखावज का
1: जी,
0: तो उसी साहित्य को लेकर तबले का भी साहित्य बढ़ने लगा।
1: इसका भी एक अलग शास्त्र बना।
0: बिल्कुल शास्त्र जी, बना जी। तबले के घराने बने, जैसे दिल्ली, अजराड़ा, पंजाब, बनारस, लखनऊ
1: जी,
0: ऐसे तबले के घराने बने।
1: हाँ हाँ।
0: और उसमें भी बहुत शैलियां विकसित हुई
1: जी,
0: और कई सारे तबले के मतलब स्वतंत्र वादन के कार्यक्रम और तबला संगत, ये दोनों चीजें उसमें आ गई
1: जी जी। इसमें भी कुछ महनीय कलाकारों ने बोल निकालने का यानी तबले से बोल बजाने का अपना अपना तरीका विकसित किया।
0: बिल्कुल, मतलब घराना जो होता है वो उसी विशेषता से लेकर होता है। घराने जो तबले के हैं
1: जी,
0: उनके जो बोल है
1: हाँ,
0: उसके वो बोलों के आधार पर उसका घराना पहचाना जाता है। तो ऐसे तबले के घराने और उनका बोल और उनका पूरा साहित्य विकसित हुआ है।
1: जी जी।
0: पखावज के जो खुले बोल है
1: जी,
0: तो एक ऐसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं। अब तबले पे ही उसका मतलब निकास कैसे होती है, तबले पर पखावज की निकास है ये
1: जी।

0: तो ये पखावज का एक नमूना है कि ये खुला बोल पखावज पे बजता है। अभी ये तबले के जो बोल होते हैं वो बंद बोल है।
1: हाँ।
0: तो वो इस तरह से होते हैं।

0: वाह क्या बात। हम बात कर रहे थे रविंद्र जी चौताल की
1: जी।
0: तो चौताल जिस गीत में हमें सुनने को मिलता है, ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। चौताल जो है धा धा दिन ता किट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा
0: जी।
1: इसमें सप्त सुरन तीन ग्राम गीत है जो चौताल में निबद्ध है। बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो चौताल में मृदुंग के ऊपर पखावज के ऊपर वो बजाए गए हैं।
0: आइए सुनते हैं।

0: संगीत सम्राट तानसेन। इस फिल्म का गीत आपने सुना मन्ना डे के स्वर में, संगीतकार एस एन त्रिपाठी।
1: सिने संगीत में कबले का दौर, इस श्रृंखला की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूलिए बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार ही नहीं, असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: वीको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
3: वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: मजेदार नहीं, असरदार।

बात एक रात की। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और धुन एस टी बर्मन ने बनाई थी। कण कण में भगवान, लीजिए अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में ये गीत। इसे सुमन कल्याणपुर ने गाया है, भरत व्यास ने लिखा है और शिवराम ने इस गीत की धुन बनाई है।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है लागी नाही छूटे राम। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और तर्ज है चित्रगुप्त का।

दिल ही तो है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुमन कल्याणपुर की यह आवाज थी। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: राष्ट्रीय 420 फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे। इस गाने के पहले आपने जो गाना सुना था उसे हमने अनारी फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर की और मुकेश की आवाजें थी, शैलेंद्र ने बोल लिखे थे और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। अभी जो गीत आप सुन रहे थे इसे हमने श्री 420 फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें थी और हसरत जयपुरी ने बोल लिखे थे, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
3: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे साथी फिल्म से। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे नौशाद।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। हमें राय प्यार के इस कार्यक्रम में लीजिए। अब सुनिए भीगी रात फिल्म का गीत। आवाजें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की हैं। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं रोशन।

0: भीगी रात फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई थी रोशन ने। हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में चलिए लेते हैं एक बहुत छोटा सा अंतराल।

श्री 420 फिल्म का गीत लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। शैलेंद्र का ही लिखा एक और गाना आइए सुनते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: विविध भारती जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
6: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका

0: प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीष शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिएं देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन।

0: और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर ये एफएम सनसिटी चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं बॉर्डर 2। इस फिल्म का गीत दलजीत दोसांझ, परंपरा और सचेत टंडन की आवाज़ों में। कौसर मुनीर के बोल हैं सचेत परंपरा का संगीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से। आइए अब सुनते हैं योद्धा, इस फिल्म का गीत विशाल मिश्रा की आवाज में, संगीत है विशाल मिश्रा का।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटिव चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार। इस कार्यक्रम को हम सूर्यनगरी चैनल से रिले करेंगे।

0: अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार। आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से इस वक्त आप जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। जानकारियों, गीतों, बातों से भरा प्रोग्राम जिसका रहता है आप सभी को हर सुबह इंतजार। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं, इसलिए जो कुछ है आज में ही तो है। इसी विश्वास और आशा के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज जो है वो आज आपके हाथ में है और कल जो है उसके लिए हमें इंतजार करना होता है, इसलिए जो चीज़ हाथ में है उसका पूरा पूरा उपयोग हमें करना चाहिए। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत उपहार है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। और एक बहुत खास बात, क्योंकि मित्रों के बिना जिंदगी अधूरी है, मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं आती, इसलिए मित्रता कोई स्वार्थ नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक विश्वास है जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। जी श्रोताओं, और एक जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि जो हमारी टीम है उसका परिचय हम आपसे करवा दें। तो बिल्कुल रेडी है आज की नमस्कार की टीम। श्रोताओं, चलिए चलते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ और आपको बताते हैं कि ट्रांसमीटर्स पर हमारे साथ हैं पारसपुरी गोस्वामी और चंद्रा राम पटेल।
0: कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दे रहे हैं सुनील जयपाल।
1: और श्रोताओं, अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं जय श्री राठी और सोनिया देवड़ा।
0: नमस्कार कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं राजेश लामरोड। और प्रस्तुति है संजय व्यास की।
1: श्रोता नमस्कार की पूरी टीम में

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जी हाँ दोस्तों
1: बिल्कुल अर्चना बताएं।
0: प्रोग्राम नमस्कार में आप सुन रहे हैं गाने नए नवेले, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने, और सीमा जी आपके लिए लेकर आती हैं बहुत प्यारी सी स्टोरी जिसका इंतजार हम सभी को रहता है।
1: तो बिल्कुल इंतजार करते हैं खत्म अर्चना, और तुम्हें बताते हैं कि देखो सेविंग करना किसे पसंद नहीं है, है ना?
0: बिल्कुल,
1: हम सबका सेविंग अकाउंट होता ही होता है, और जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कोशिश ये होती है कि आज जो डिपॉजिट किया जाए उसमें कुछ इंटरेस्ट लग के कल अमाउंट जो है वो मेरा बढ़ जाए।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक खास बैंक खाता भी होता है?
0: वो कौन सा?
1: वो कुछ ऐसा होता है कि इमेजिन करो ये एक बैंक खाता सबके पास होता है, वैसे पता नहीं होता है लोगों को जनरली, लेकिन सबके पास होता है।
0: ऐसा कौन सा खाता है जो हमें नहीं पता है?
1: इसमें हर सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं।
0: ओके,
1: ठीक है। इस खाते में एक जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो बैलेंस होता है वो आगे नहीं जाता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, कोई बैलेंस अगले दिन के लिए नहीं जुड़ता,
0: मतलब एक दिन का जितना बैलेंस होता है वो उसी दिन खत्म हो जाता है।
1: उसी दिन खत्म करना होता है, और वो भी

0: कहते ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, समझदारी से, नहीं तो फिर जो कहते ना कि इंटरेस्ट मिलने वाला वो नहीं मिलेगा,
1: वो नहीं मिलेगा,
0: बेकार हो जाएगा।
1: हाँ।
0: तो रोज सुबह आपके खाते में जुड़ जाते हैं 86,400 रुपए। इस खाते में कोई बैलेंस जो है अगले दिन के लिए नहीं जुड़ता है श्रोताओं, आप इसमें कोई नकद राशि नहीं रख सकते हैं और हर शाम उस राशि का वो हिस्सा बेकार हो जाता है जिसे आप दिन भर में इस्तेमाल नहीं कर पाए। मतलब अगर आपने 86,400 में से जो यूज नहीं किया वो आगे नहीं जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि हर दिन इतना अमाउंट मिलेगा, आपको कैसे यूज करना है ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो हर दिन एक एक रुपए निकाल लेंगे, क्या करेंगे ऐसा सोचिए, सोचिए सोचिए सब सोचिए, क्योंकि ये सभी के पास होता है। और श्रोताओं इसका नाम जो है, ये जो बैंक है जिसमें 86,400 रुपए का जो एक इमेजिनेशन है हमें मिलता है, ये है समय। जी हाँ, हर सुबह ये आपको 86,400 सेकेंड जो है आपके बैंक अकाउंट में जमा करता है। बैंक अकाउंट यानी हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी का वो दिन। हर रात ये आपके द्वारा बुद्धिमानी से जो आपने काम नहीं किया है, समझ गए, बुद्धिमानी से जो नहीं किया है, यूज नहीं किया है, उस समय को खो देते हैं। हम कहते हैं ना समय नष्ट हो रहा है आपका। और हर दिन जो है, एक दिन से दूसरे दिन हम ये नहीं कह सकते कल के मेरे इतने पल जो बचे हुए हैं वो मैं अगले दिन जी
1: अगले दिन
0: नहीं। जैसे कि हमने शुरुआत तुमने की थी अर्चना, कि जो आने वाला कल है उसमें नहीं, आज में हम
1: जीते।
0: और जब हम आज में जीते हैं तो फिर जिंदगी बहुत सुहानी सी हो जाती है। और कहते ना कि हर चीज का हम पूरा उपयोग करते हैं। इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं है, इसलिए आप अपने ऊपर से उधार नहीं ले सकते या अपने पास मौजूद समय से अधिक समय का उपयोग नहीं कर सकते। हर दिन खाता नए सिरे से शुरू होता है श्रोताओं। हर रात ये एक कहते ना प्रयुक्त समय पर नष्ट भी हो जाता है, फिर नई गिनती शुरू हो जाती है। यदि आप दिन भर के जमा समय का उपयोग करने में विफल रहते हैं तो ये आपका नुकसान है। यानी कि सेविंग में से माइनस में आपका काम है जो चलने लगता है और आप इसे वापस पाने के लिए अपील नहीं कर सकते। इसलिए समय की कद्र करें, जो समय आपको मिला है हर सुबह उसका पूरा पूरा उपयोग करें।

0: जी हाँ दोस्तों, ये ज़िंदगी के कुछ जो पल होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, लेकिन जैसा कि आपको इस कहानी में बताया गया कि हर दिन आपके अकाउंट में एक नया अमाउंट आता है और उसे आपको उसी दिन ख़त्म करना होता है। तो अगर आप जब अपने दिन की जो अंत करें तो किसी रिग्रेट के साथ ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में रिग्रेट के साथ आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। और जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें आँखों में खुशी, लबों पर हंसी उसके साथ करें, क्योंकि गम कहीं नहीं हो, उसका नाम ना हो। और साथ ही साथ एक विश्वास आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए कि आज का दिन आपका कल से बेहतर गुजरे, और उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने चाहिए।
1: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जी हाँ श्रोताओं, बात हमने की थी एक बैंक अकाउंट की जो हमें रोज कुछ ना कुछ देकर जाता है और उसे हमें यूज करना होता है, लेकिन एक सच वाला बैंक अकाउंट भी होता है अर्चना, जिसमें हम हमारी सेविंग्स जो हैं वो रखते हैं और वहाँ पे इंटरेस्ट भी लगता है। और कई बार हम देखते हैं कि बैंक नहीं जाने के चक्कर में हम लोग आजकल जो हमारे पास में पेमेंट मोड है ऑनलाइन उस पे बहुत रिलाई कर लेते हैं। लेकिन श्रोताओं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट सेफ्टी टिप्स होती हैं कुछ, जिनका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। और डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी ज़िंदगी को वैसे तो बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कहते ना कि जितना आसान बनाया उतनी ही छोटी सी लापरवाही अगर कर देंगे तो बड़ा भारी नुकसान भी हमें सहन करना होगा, जिसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है और ना कोई करना चाहता है। तो श्रोताओं, आपको किस बात का विशेष ख्याल रखना है, कुछ ऐसी टिप्स हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, यूपीआई पिन कभी भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। याद रखिए, बैंक या पेमेंट ऐप कभी भी आपसे यूपीआई पिन, ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगते। अगर कोई फोन करके मांगे तो समझ जाए कि वो फ्रॉड हो सकता है।
1: साथ ही साथ एक और बात का ख्याल आपको हमेशा रखना चाहिए कि ओटीपी हमेशा गुप्त रखना चाहिए। ओटीपी आपके अकाउंट की सुरक्षा की चाबी है, इसलिए किसी को ना बताएं, चाहे सामने वाला खुद को बैंक का अधिकारी ही क्यों ना बताए। और जब आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो पेमेंट सेंड करने के अंदर में बहुत छोटा सा अंतर होता है। पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए कभी भी जब रिसीव करने का आपके पास मैसेज आए तो उसमें पिन ना डालें। और इन चीजों को आप अगर ध्यान रखते हैं और हड़बड़ी नहीं करते हैं तो यूपीआई इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं।
0: जी, और श्रोताओं, QR कोड जो है उसे भी सोच समझ कर स्कैन करें। कई बार हम जल्दी करते हैं और स्कैनर लेकर के फट से कर देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि QR कोड स्कैन करके आमतौर पर जो पैसे भेजे जाते हैं, पैसे कई बार मिलते भी नहीं हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के भेजे QR कोड को स्कैन करने से पहले पूरी जांच कर लें। और अर्चना, तुम्हें एक और बात बताऊं कि सिर्फ आधिकारिक ऐप्स जो होती हैं उनका ही हमें उपयोग करना चाहिए, और पेमेंट ऐप्स को हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। अननोन लिंक्स या APK फाइल्स जो होती हैं उनसे ऐप्स इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। और एक बात बता दूं कि ये सब आजकल हम देखते हैं कि किसी को भी हम कॉल करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन पहले जो डायल करने के जस्ट बाद में ये इंफॉर्मेशन शेयर होती है, लेकिन फिर भी जो फ्रॉड केसेस हैं और जो कहते हैं ना शिकार हैं, दोनों ही नंबर जो है वो कुछ कम नहीं हो रहा है।
1: वही एक और बात है सीमा जी, कि जब भी हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आता है, आजकल हमारी आदत में हो गया है कि टेक्स्ट मैसेज हम नहीं देखते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन अलर्ट में आपको टेक्स्ट मैसेज हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है।
0: और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो पब्लिक वाईफाई है उस पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, कोई कैफे है या पब्लिक हॉटस्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन बैंकिंग या ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर लेते हैं, जो कि सेफ नहीं होता है। और श्रोताओं, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मोबाइल पर पिन है, पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट्स है या फेस लॉक है, ये जरूर रखें, स्पेशली इन एप्स के लिए।
1: बिल्कुल, और इन सब जानकारियों के साथ में आप यूपीआई को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं।
0: कहते हैं ना कि जानकारी ही बचाव है।

0: सीमा जी, कभी कभी किसी के होने भर से कितना प्रभाव पड़ता है और किसी व्यक्तित्व का इतना प्रभाव होता है कि उसकी प्रेजेंस ही इंसान को बहुत खूबसूरत बनाती है या बहुत मन को बहुत अच्छा कर देती है।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा क्यों होता है?
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है।
0: जी
1: जैसे अगर हम दो पर्संस की बात करें,

तो उनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि मैं शून्य हूँ तुम शिखर हो, मैं बात हूँ तुम असर हो, मैं आँख हूँ तुम नजर हो, तुम नेह का एक शजर हो। जब इस तरह की कुछ बात होती है तो बॉन्डिंग का तो कहना ही क्या। और श्रोताओं, आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो ये कह रही हैं कि यहाँ हमें रुकना पड़ेगा एक न्यूज़ ब्रेक के लिए। ये

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 4 जून तक हीट वेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज। इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
2: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। राजस्थान में 3 सदस्यों, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 1 आरएस सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया है। वहीं 332 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन भी बंद की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। इस साल 56,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस में पहला स्थान हासिल किया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम बनाई है। बोर्ड ने कहा कि वह पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे राजस्थान और दिल्ली के जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि 10 दिन का ये चिंतन शिविर पुष्कर

में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। लगातार पिछले दो दिनों से आंधी बारिश के दौर से तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। नागौर में तड़के 4 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। बारा और भीलवाड़ा में भी अलसुबह हल्की बारिश हुई। वहीं कल जैसलमेर में रेत का बवंडर उठा और दिन के समय ही अंधेरा छा गया। आसमान से दूर ही धूल का गुबार नजर आया। जिले के नाचना, सुल्ताना और मोहनगढ़ में बवंडर का काफी असर रहा। नाचना में ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और हनुमानगढ़ के संगरिया सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 5.5 सेंटीमीटर बारिश कोटपुतली के शाहपुरा में दर्ज की गई। आंधी बारिश के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव से राहत बनी रहने के आसार हैं। प्रदेश में आए प्रचंड तूफान और बारिश के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम के तंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। जयपुर और कोटा जोन में बड़ी संख्या में बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और फीडर प्रभावित हुए। इनमें से 387 गांव में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि इनमें से 366 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। वहीं 21 गांव में सप्लाई सुचारू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण के स्रोत के रूप में दूध के महत्व को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। ये डेयरी उत्पादन, सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती है। विश्व दूध दिवस के मौके पर देश में अनेक स्थानों पर डेयरी और कृषि संस्थानों में सम्मान समारोह और जागरूकता शिविर रखे गए। उधर प्रदेश में पाली जिले के सादड़ी में विश्व दूध दिवस के मौके पर ऊंटनी के दूध का निशुल्क वितरण कर इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में फिल्मी गीत गाए। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और मशहूर गायक मोहम्मद रफी के साथ भी सैकड़ों गीत गाए।

0: गया आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: प्रदेश में आज से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का यह अभियान 30 जून तक संचालित होगा। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभियान के तहत होटलों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार को आईपीएल 2026 का खिताब दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें

0: शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी, 4 जून तक हीट वेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, समाचारों के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और नमस्कार में आपके साथ मैं हूँ सीमा शर्मा, और मेरे साथ
2: अर्चना चौहान।

0: श्रोताओं, आज है 1 जून और 1 जून में बहुत सारे दिवस जो हैं वो दर्ज हैं। हम आपको बताएं कि 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार वैश्विक माता पिता दिवस की घोषणा की। तब से ये दिवस विश्व भर के माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है हर वर्ष 1 जून को।
1: और इसी कड़ी में आज हम सुनेंगे भेंट वार्ता वैश्विक अभिभावक दिवस पर डॉक्टर प्रांशु सिंह, सहायक आचार्य मनोविज्ञान विभाग एम्स जोधपुर से संजय व्यास की बातचीत। प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का और बातचीत का विषय है माता पिता के प्रति सहयोग, आदर और आभार।
2: मित्रों, बहुत बहुत स्वागत। 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है और माता पिता और बच्चों का रिश्ता बहुत निस्वार्थ रिश्ता होता है। माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए करते हैं वो स्वार्थ से परे होता है और इस दिन को हम किस तरह से अपने पेरेंट्स को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम मना सकते हैं, यही ये दिन बात बताता है। क्योंकि कहा भी जाता है, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती, पिता कुपिता नहीं होते। तो माता पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कई बार वो अपने संसाधनों से अधिक चले जाते हैं। इसके बावजूद उनकी यही प्रयास या कोशिश रहती है कि बच्चों को वो एक अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश दे पाएं, अच्छे नागरिक बना सकें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रांशु सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, एम्स जोधपुर। डॉक्टर प्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: जब भी हम अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, खास करके वो बच्चे जो बड़े भी हो गए हैं, काम में भी लग गए हैं और वो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, किस तरह की भावना आती है मन में?
3: माता पिता के लिए हमेशा सारा स्नेह होता है और एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो जैसे माता पिता ने हमारा ध्यान रखना है तो एक वो भावना भी उत्पन्न होती है कि हमें भी अब अपने माता पिता को वो चीज वापस देनी है जो उन्होंने हमें दी है।
2: यद्यपि माता पिता ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बच्चा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ से भी कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो माँ बाप ने उनको दिया है वो प्रतिदान के रूप में कुछ लौटाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने संसाधनों को उनको दे, बल्कि एक शुक्रिया, उनके साथ बिताए हुए पल, क्वालिटी टाइम, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। आज के जमाने में हम देखते हैं कि बच्चों के पास समय नहीं है, खास करके जो बच्चे पढ़ाई में लग गए हैं या किसी काम में लग गए हैं, उनके पास अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए समय नहीं होता है। तो ये दिक्कतें हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 जून को हम वैश्विक अभिभावक दिवस मनाते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है ये हमेशा बनी रहे। तो इस बार जो ये दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कोई विशेष थीम लेकर के आया है?
3: इस बार का थीम पेरेंट्स को लेके ही है।
2: इस बार 1 जून को हम ये जो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पेरेंट्स डे, इसकी क्या विशेष थीम है?
3: इस बार का जो थीम है वो है टुगेदर फॉर पेरेंट्स और इसका मतलब यही है कि पूरा समाज और जितने समाज के लोग हैं वो पेरेंट्स की मदद कर पाए, क्योंकि अक्सर आज की मॉडर्न जीवन में पेरेंट्स अपने आप को अकेला पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी नाना नानी का कई बार सहारा नहीं रहता है और ऐसे इस कंडीशन में बच्चों को पालना, परिवार को आगे बढ़ाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। तो इस बार का थीम यही है कि हम पेरेंट्स की और कैसे मदद कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, बच्चों का ये सोचना होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सुपर पेरेंट्स हैं, अपने पिता को वो सुपर डैड की तरह देखते हैं, मदर को सुपर मॉम की तरह देखते हैं और उनके मन में ये होता है कि ये किसी भी परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। जब हम बड़े होते हैं तब हमें पता लगता है कि इस दुनियादारी में पेरेंट्स भी कई बार कमजोर पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की उनको आवश्यकता रहती है कई बार।
3: हाँ जी बिल्कुल, कई बार जैसे जब हम बड़े होते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि हाँ, हमारे माता पिता में भी कुछ कमियां थी या वो कुछ चीज बेटर कर सकते थे और हम रियलाइज करते हैं कि हाँ, कुछ चीजें उन्होंने जैसे शायद अपने माता पिता या अपने जिस समाज में वो बड़े हुए वहां से सीखी और हो सकता है कि उनको डायरेक्शन की जरूरत है या उनको फिर से चीजों को नई तरीके से समझने की जरूरत है।
2: बिल्कुल, जो पेरेंटिंग है वो अपने आप में एक पूरी आर्ट है, साइंस है और जो माता पिता अपने बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर के थोड़े से सजग रहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा पेरेंटिंग में मदद करता है?
3: जी बिल्कुल, पेरेंटिंग जैसे आपने कहा कि एक बहुत अच्छी आर्ट हो सकती है। हमारे जो मनोचिकित्सा या मनोविज्ञान की तरफ से देखें तो एक जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता से ही

0: ही इमोशनल बॉन्डिंग बनाना सीखता है और सोसाइटी में कैसे वर्क करना है वो माता पिता को देख के ही करता है. तो एक तरह से जो माता पिता को जिस तरह वो देखता है अपने सामने, बच्चा उसको एक मिरर की तरह उसका ब्रेन रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. और दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जिनको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं. तो जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपने समाज में, सोसाइटी में और स्पेशली माता पिता को जैसे देखता है वो वैसे ही उसका व्यवहार वैसे ही बन जाता है. तो एक बच्चा अपने माता पिता से सीखता है कि कैसे स्नेह करना है, कैसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं. आगे जाके जो रिश्ते वो बनाएगा स्वस्थ तभी होंगे जब उसका अपने माता पिता से रिश्ता स्वस्थ होगा. तो ये सबसे जरूरी चीज होती है जो परिवार एक बच्चे को देता है, वो है कि कैसे हम समाज में रिश्ते बनाते हैं, कैसे हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट.
1: डॉक्टर प्रांशु जी, जो भी सफल व्यक्ति होते हैं जीवन में वो एक बात जरूर कहते हैं कि परिवार का सपोर्ट बहुत रहा. तो हमारी सफलता के लिए हमारे पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और जब हम किसी एक मकाम पर पहुंच जाते हैं तो अक्सर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते कि मुश्किल वक्त में या कमज़ोर समय में हमारे पेरेंट्स की क्या भूमिका रही. हम किस तरह से एक मकाम पर पहुंचने के बाद जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तब अपने पेरेंट्स को ये रियलाइज करवाएं कि आपका जो सपोर्ट पहले विगत में रहा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है. हम क्या तरीकों से, हम सीधे तो नहीं कह सकते कि आपने जो किया वही उसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन कुछ ऐसे इनडायरेक्ट तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपने पेरेंट्स को ये रियलाइज करवाएं कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ. तो ऐसे क्या छोटे छोटे जेस्चर्स हो सकते हैं?
0: कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं वो है जैसे कि जब भी हमारी कोई सफलता हम कोई प्राप्त करते हैं तो उनको सबसे पहले या उनको उसी दिन हम बताएं और उनको बताएं कि धन्यवाद करें उसी दिन, तो उनको महसूस होगा कि वो हमारी सफलता से जुड़े हुए हैं. दूसरा, छोटी छोटी चीजें जैसे कि जन्मदिन पे याद करना या एनिवर्सरी पे उनको याद करना, या जब गेस्ट आते हैं या रिश्तेदार होते हैं सामने तो उनके सामने प्रेज करना अपने माता पिता के एफर्ट्स को. ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो दर्शा सकती हैं.
1: जी, और इन दिनों में अगर आपके पास समय है, वीकेंड पे आप अगर कोई सीरीज देख रहे हैं तो आप उनके साथ कर देख सकते हैं. ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी समय बिताएं और उनको रियलाइज करवाएं कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं अलग नहीं है. क्योंकि कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत आसान होता है. घर में जाने के बाद आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, पेरेंट्स कहीं और होते हैं, और डिनर आप साथ ले सकते हैं. ये जता सकते हैं कि ऑफिस के बाद में अब मेरा जो समय है वो केवल मेरे अपने बच्चों और पत्नी के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है. ये ऐसी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं. जो दूर रहते हैं पेरेंट्स उनको हम क्या कर सकते हैं? रोजाना फोन तो कर ही सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ और चीजें भी की जा सकती हैं?
0: जो दूर रहते हैं पेरेंट्स, फोन करने के अलावा हम उनके लिए कुछ चीजें भिजवा सकते हैं जो हम अर्न कर रहे हैं, और कुछ जैसे छोटी छोटे गिफ्ट, ग्रीटिंग कार्ड हो गए, केक हो गए बर्थडे पे, या अगर उन्हें कुछ मिठाई पसंद है तो वो हम भिजवा सकते हैं. आजकल ये सब काफी पॉसिबल है, इतने सारे शॉपिंग एप्स के जरिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं. और जैसे कि आपने कहा कि वीकेंड आता है या कोई हॉलीडे आता है तो उनको जरूर हम इंक्लूड करें अपने लेजर टाइम में भी.
1: बिल्कुल डॉक्टर प्रांशु, एक चीज है कि ये बहुत बाजार को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है क्या? जैसे आपने बताया कि आप किसी साइट पे बुक करके बुके भिजवा सकते हैं या केक भिजवा सकते हैं, इसके अलावा भी हम कोई तरीका और निकाल सकते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा बाजार को या डिलीवरी जो साइट्स हैं, ऐप हैं, उनको इन्वॉल्व ना करें और जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही हम उनको जता सकते हैं?
0: हाँ, ये हमें डेफिनेटली बाजार को बहुत ज्यादा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जैसे आपने बोला. तो अब जैसे कि घर में पूजा होती है, बीच बीच में त्योहार होते हैं, तो उनमें सबसे पहले माता पिता या बड़ों को हमारी संस्कृति में सम्मान दिया जाता है. तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, हो सकता है कि कोई कमर्शियल किसी जेस्चर से ज़्यादा मायने रहे.
1: जी बिल्कुल, ये चीज़ें हैं जो आप अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड अपना दिखाने के लिए कर सकते हैं. और इन टर्न में जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं तो उनका क्या रोल रहता है उस वक्त में?
0: जी बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं घर के, अगर वो अपने दादा दादी, नाना नानी, बाकी बुजुर्ग लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि वो ज्यादा खुश रहते हैं. स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जो परिवार में बुजुर्गों के साथ या दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों के साथ बच्चे होते हैं तो वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और वृद्ध लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है. इसके लिए नाना नानी, दादा दादी से बच्चे बहुत कुछ

0: सीखते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, कैसे बड़े लोगों का आदर कैसे करना है, समाज में बड़े लोगों के साथ कैसे रहना है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं समाज की बच्चों से. तो ये बच्चे ये सब चीज़ें सीखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं.
1: एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि हमारे यहाँ अब एल्डरली पेरेंट्स की संख्या बहुत बढ़ रही है. जो हमारे यहाँ लॉन्जिविटी बढ़ गई है और जो एवरेज एज हमारी बढ़ी है, उससे अब हमारे घर में बूढ़े माता पिता अधिक समय तक हमारे साथ रहते हैं. ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में उनको कुछ दिक्कतें और बीमारियाँ भी होती है, जैसे भूलने की बीमारी होती है या फिर दवाइयाँ समय पर लेने की. तो इसमें हम किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं?
0: जो ये भूलने की बीमारी होती है जिसको डिमेंशिया कहते हैं, उसमें एक मदद हम ये कर सकते हैं कि कई बार जो हमारे माता पिता होते हैं उम्र की वजह से उनका घर में रोल कम हो जाता है. तो पहले जब मान लो कि वो अतिथि वगैरह के साथ बैठते हों, पर अब शायद वो कम बैठ रहे हों, तो हम उनका उम्र के साथ साथ उनके जो रोल चेंज हो रहा है परिवार में उसको हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि उनको जो भी हम डिसीजन लेते हैं फैमिली में उनको हमेशा इंक्लूड करने की कोशिश करें और हमेशा उनको इंकरेज करें कि वो लोगों से बातचीत करें, बाहर लोगों से मिलते रहें, क्योंकि इसका बहुत सोशलाइजेशन का बहुत असर पड़ता है. भूलने की दिक्कत है, ये प्रिवेंट करती है एक तरह से भूलना.
1: जी, मनोविज्ञान क्या कहता है कि एक जो यूनिट की तरह परिवार रहता है जिसमें आपके पेरेंट्स भी साथ रह रहे हों या न भी रह रहे हों, लेकिन पेरेंट्स हमेशा जुड़ाव महसूस करते हों, वो परिवार ज्यादा सुखी और प्रसन्न परिवार होते हैं?
0: जी बिल्कुल. हम अक्सर मॉडर्न जीवन में जो हमारे रिश्ते हैं उनका इम्पोर्टेंस हम कम देते हैं, बट हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारे अंदर तनाव कितना है, वो डायरेक्टली उस पर निर्भर करता है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं. तो अगर हमारे घर वालों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, चाहे वो बच्चों से हों या हमारे माता पिता से हों, तो हमारा और परिवार का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है.
1: जी डॉक्टर प्रांशु, इस प्रोग्राम में आप अगर कोई बात हमें बताना चाहते हैं मनोविज्ञान एक मनोचिकित्सक होने के नाते, तो वो कौन सी होगी?
0: ये जैसे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक तरह से मरते मरते
1: मरणासन्न जो होते हैं, लगता है कि हम बिल्कुल उस दरवाजे तक जाके आए हैं.
0: तो उन पे जो रिसर्च हुआ है, उन लोगों से जब बातचीत करते हैं तो वो इसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि ये जो चीज पीछे नहीं छूटनी चाहिए हमारे जीवन में, वो है हमारे रिश्तों पे जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी बिजी लाइफ में, या सक्सेस पाने के पीछे हम कई बार अपने रिलेशनशिप्स को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं. हम अक्सर अपने परिवार के लोगों से ठीक से नहीं बर्ताव करते, चाहे वो बच्चे हों या हमारे माता पिता हों. तो रिसर्च भी ये कहता है कि इस चीज पे हम ध्यान दें तो हम सुखी रह सकते हैं और सक्सेस भी ज्यादा पा सकते हैं.
1: बिल्कुल, और रिश्तों की जो संपन्नता की संदूक होती है उसमें केवल आपकी पत्नी और बच्चे जो हैं उनके साथ रिश्ते ही मायने नहीं रखते, बल्कि आपके अपने परिवार में पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और जो मैटरनल पेरेंट्स हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं वो भी उतने ही मायने रखते हैं. तभी एक अच्छा भरा पूरा परिवार हम कहला पाएंगे, और वो हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन ए वे वो आपको और ज़्यादा समृद्ध और एनरिच करता है.
0: बिल्कुल, और जितना परिवार में जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितने तरह तरह के लोगों से एक छोटा बच्चा मिलता है, उतना वो बच्चा सीखता है और समाज में केपेबल बनता है.
1: तो इस वर्ल्ड पेरेंट्स डे पे आइए हम सब मिलकर के और अपने माता पिता का एक तरह से शुक्रिया अदा करें, उनका आभार प्रदर्शित करें, और आभार प्रदर्शित सीधे जाकर के उनको ये न कहें कि आपका बहुत बहुत आभार, बल्कि और बहुत सारे सटल तरीके जो हो सकते हैं. आप पांव छूना तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है ही, उसके अलावा उनकी पसंद की कोई डिश बना सकते हैं या फिर उनकी पसंद की कोई किताब उनको गिफ्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम ये जता सकते हैं कि आप अभी भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, हमेशा बने रहेंगे महत्वपूर्ण. ये अगर हम जता सकें तो वर्ल्ड पेरेंट्स डे को सेलिब्रेट करने की हमारी जो मंशा है वो सफल हो पाएगी.
0: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल. डॉक्टर प्रांशु सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार. असिस्टेंट प्रोफेसर साइकियाट्री डिपार्टमेंट एम्स जोधपुर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने के लिए.
0: थैंक यू सो मच.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वैश्विक अभिभावक दिवस पर डॉक्टर प्रांशु सिंह, सहायक आचार्य मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर से माता पिता के प्रति सहयोग, आदर और आभार विषय पर संजय व्यास की बातचीत. प्रस्तुति एवं संयोजन राजेश लामरोड का था.

दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जन्म की तो हमने बात कर ही ली थी, और 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया था। संगीत की शिक्षा के साथ साथ उन्होंने चित्रकला की भी पढ़ाई की थी, लेकिन उनका कोई इरादा नहीं था फिल्मी दुनिया में आने का। उनको बाहर जाकर किसी भी इस तरह के काम करने की अनुमति नहीं थी। 1952 में फिर भी उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी सार्वजनिक प्रस्तुति दी थी, और 1954 में फिल्म मंगू से उन्होंने हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया था।

फिल्म मंगू के तुरंत बाद सुमन ने दरवाज़ा फिल्म जो कि 1954 में आई, संगीतकार शौकत अली हाशमी यानी कि नौशाद के संगीत निर्देशन में 5 गाने गाए जो कि इस्मत चुगतई द्वारा निर्मित और शाहिद लतीफ द्वारा निर्देशित थे। चूंकि दरवाज़ा पहली रिलीज़ हुई थी इसीलिए आमतौर पर सुमन कल्याणपुर की यह पहली हिंदी फिल्म मानी जाती है। और 1954 में ही सुमन ने फिल्म आर पार के लिए मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त के साथ ओपी नैयर के हिट कलाकारों की टुकड़ी के साथ गाने गाए। सुमन कल्याणपुर का पहला फिल्म गीत दरवाज़ा फिल्म में जो तलत महबूब के साथ युगल गीत था, उन्होंने एक संगीत समारोह में भी उन्होंने उनको गाते हुए सुना था और उसके बाद वो प्रभावित हुए और इस तरह उन्होंने बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: अपना सुख एक तरफ हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर

हो और सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी का नाम न आए ऐसा हो भी नहीं सकता। ये जो गीत अभी आप युगल जोड़ी में सुना वो दोनों की आवाज़ में ही था। दोनों ने साथ में करीब 140 से ज़्यादा युगल गीत गाए। उन गीतों में रोमांस, नज़ाकत और मिठास का अद्भुत संगम मिला था। दोस्तों, सुमन जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत थी भावनाओं को आवाज़ देना। चाहे प्रेम हो, विरह हो या इंतज़ार, उनकी आवाज़ हर भावना को जीवंत बना देती थी।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ की तुलना अक्सर लता जी से की जाती है। खुद सुमन जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कॉलेज के दिनों में वे लता जी के गीत गाया करते थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। शायद यही वजह रही कि उनकी गायकी में भी वही नज़ाकत सुनाई देती थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और कई ऐसे गीत दिए जिन्हें सुनकर लोग आज भी याद करते हैं। और कहते भी हैं ना कि कुछ आवाज़ें वक्त के साथ नहीं बदलती, वो यादों की तरह दिल में बस जाती है। सुरों का रिश्ता जब

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

दोस्तों बात करें संगीतकार जोड़ी की तो उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, एस डी वर्मन, एन दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त, नौशाद, एस एन त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाने गाए। और बात करें पुरुष गायकों के साथ तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद, हेमंत कुमार के साथ लोकप्रिय युगल रिकॉर्ड गीत रिकॉर्ड किए। और अगर हम बात करें फिल्म रेशम की डोरी की तो ये फिल्म आई थी 1975 में और इस फिल्म का ये जो एक गीत था, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, इस गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला था।

बात करें उन फिल्मों की जिनमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी, तो वो फिल्में हैं फ़र्ज़, वीराना, बात एक रात की, मियाँ बीबी राजी, शमा, दिल ही तो है, जानवर, नूर महल, एक साल पहले, नसीब, रेशम की डोरी, दिल एक मंदिर, ब्रह्मचारी, साथी, जब जब फूल खिले, और भी बहुत सारी फिल्में हैं उन फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी।

और अगर हम बात करें पुरस्कारों की, तो भारत सरकार द्वारा कला और संगीत के क्षेत्र में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया 2023 में। साथ ही उन्हें सुर श्रृंगार सम्मान से भी नवाजा गया और 2009 का उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिला।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की मधुर स्मृति थी। उनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ियों को भी संगीत की मिठास का एहसास कराती रहेगी। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि सुरों की दुनिया में जो दीप जलाते हैं, वो कभी अंधेरों में खो नहीं जाते। जिसकी आवाज़ दिलों में घर कर जाए, वो कलाकार कभी भुलाए नहीं जाते।

दोस्तों, सुरों की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो शोर नहीं करती, लेकिन सीधे दिल तक पहुंच जाती है। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ भी ऐसी ही थी, सादगी, मिठास और भावनाओं से भरपूर। तो दोस्तों, आज का मंडे मेलोडीज प्रोग्राम में हमने बात की सुमन कल्याणपुर के बारे में, और आज का ये मंडे मेलोडीज प्रोग्राम यहीं तक। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सोनिया।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल

0: 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गायिका, मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को। सुनते हैं आधी रात के बाद फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में। प्रेम धवन की रचना को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

0: सर है
1: सर के सहारे दिल के सहारे मारो ना गुमान से
0: दिल लाया मैं बचा के पंजाब से कितना प्यार देखो मुझे।

0: रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संदेश और उसके बाद एक और गीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार।

0: सखियां ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
1: सखी सहेली।
2: यादों के महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपस की बात का गाना। सुमन कल्याणपुर के स्वर में अनजान के बोलों को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
3: तुम्हें क्या सेवा कर सकता हूँ?
4: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक बेहद स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
3: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
4: इससे आपको मतलब?
3: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
4: जी
3: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
4: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
3: ओह दैट्स फाइन। अच्छा भैया बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
4: सेवा के बारे में बात।

0: अंजान का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आपस की बात का ये गाना आपने सुना, आवाज सुमन कल्याणपुर की थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: यह फिल्म अली बाबा और 40 चोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ।

अंदाज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया हुआ। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था, जिसे संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चालाक का ये गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है गणेश का।

फिल्म अनजाना का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा।

देखो देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा बना।

0: देखा देख रहा था पपीहा पपीहा देखो देख रहा था पपीहा पपीहा जाके सबसे कहेगा पपीहा पपीहा भला चुप क्यों रहेगा पपीहा पपीहा देखो देख।
1: सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गाना आपने सुना फिल्म फरियाद से। बोल केदार शर्मा के थे और संगीत था स्नेहल भाटकर का। और अब आपको सुनवा रहे हैं अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

बहके तो भंवरा वही जाए, दिल कप पिया तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के

अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें, फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र की शब्द रचना है और संगीत है सचिन देव परमन का।

यादों के महफिल कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नूर महल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल सबा अफगानी के हैं और संगीत है जानी बाबू कव्वाल का।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की बात और इस कार्यक्रम के गीत होते हैं बहुत खास, और आज भी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है। तो चलिए ना एक सुरीले सफर पर हमारे साथ। इस सुरीले सफर में आज की जो इबारत है वो हम बता देते हैं, खासतौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी नहीं देखा है फेसबुक पर इस इबारत को। इबारत कुछ इस तरह से है, उनका प्यार नहीं बढ़ता चाहे दुनिया एक बटा दो हो जाए। वो सिखाते हैं गगन में उड़ते मस्त पंछी की तरह जीना, रोते रोते हंसना, दिल की गिरह खोल कर बाहर से अंदर तक दुनिया को समझना। उनके होठों पर बड़ा नाम करेगा या राज करेगी जैसी दुआएं रहती हैं, मुड़ के ना देखो या चुनरी संभालो जैसी उनकी हिदायतें जिंदगी भर साथ रहती हैं, याद रहती हैं। याद आती है उनकी सुनाई हंसों की कहानी, और गुजरते जाते हैं दिन महीने साल, हम सीख जाते हैं साथी का साथ देना। खुश रंग हिना की खुशबू लेकर डोलती पवनिया से दिल का संदेश कहना, उनका हाथ लगते ही बिगड़ता काम बन गया है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वैसे आखिरी लाइन तो एक हिंट थी आपको ये जानने के लिए कि देखिए आज आपने इस कार्यक्रम की क्या बातें होने वाली हैं उन्हें समझा है या नहीं, या ये इबारत की सोर इशारा कर रही है। और बेहद खुशी की बात है कि हमारे सभी श्रोताओं ने जल्दी से जल्दी इस थीम को पहचान लिया। हाँ, आज विश्व अभिभावक दिवस है और इसीलिए बातें हो रही हैं उन अभिभावकों की, माता पिता की, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसा हमारे एक साथी कह रही हैं, सच कहूँ तो माँ पापा का प्यार ऐसा खजाना है जिसकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ पापा का प्यार हमारे साथ खड़ा रहता है। उनकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। उनके जैसा चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ पापा का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि उनकी हर चिंता, हर दुआ और हर त्याग में दिखाई देता है। क्या बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आज के कई गाने हम समझ गए हैं और वो गीत हम

विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं पर बताएंगे नहीं। जो गीत सही होगा उस समय बता देंगे। सच ही कहेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिका के साथ एक सखी भी हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अनमोल दोस्ती होती है ये, जब इस तरह से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप झट से समझ लेते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि वो तमाम गाने बताए हैं जिन पर आज की ये इबारत रची गई है, और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि सारे गाने तो इबारत में ही छुपे हैं और एक एक गाना उनको समझ में आ गया है। क्या बात है, तो भाई ये गाना आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज आपकी पसंद के सारे गाने आ रहे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज कद्यांश को बहुत ही सुंदर भावों से सजाया है और शब्दों के चित्रण में माता पिता के ममत्व की सुमधुर खुशबू को पसारा है। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। प्यार, ममता और अपनत्व का पूरा संसार आज रच दिया है। दो पंक्तियां साझा करूंगा, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, तुम्हारा जिक्र भी कितना अजीब है मेरे चेहरे पर, आते ही लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी छा जाती है। वाह क्या बात। एक और श्रोता कह रही है कि कहीं पढ़ा था बच्चे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, अपनी बाहों में 3 साल और अपने हृदय में तब तक जब तक कि खुद उसकी मृत्यु ना हो जाए। पिता के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बचपन से पिता से एक अव्यक्त दूरी अपने आप बन जाती है, मगर पिता का हृदय बच्चे के लिए एक पाठशाला की तरह है। बच्चा समुद्र की गहराई में ना डूबने पाए, इसके लिए पिता तमाम जतन जीवन भर करते रहते हैं और उनकी छवि एक कड़क पिता के रूप में बच्चों के हृदय में दर्ज हो जाती है। मगर पिता के सीने में भी एक नाजुक दिल धड़कता है। मंगल नसीम की लिखी कुछ पंक्तियां यहां साझा कर रही हूं। क्या सीरत क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत सुंदर। एक और संदेश है कि आज की भारत में माता पिता के प्यार की खुशबू महक रही है। वात्सल्य और सुसंस्कारों का संतुलित जीवन रस लेकर उनके बच्चे खुशी से फूले फले, ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि आज इनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है। वे हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती हैं। उनके स्नेहिल स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अनमोल छाया है जिनकी याद, सीख और प्रेम हर दिन हमारा मार्ग रोशन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा आपने। और अब हम सुनवा रहे हैं ये गाना, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और हाँ आवाजें किनकी हैं।

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाजें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया है जिनके स्नेह त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बटता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बटता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफर शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का ध्यान, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफर पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी। तो

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर सूर्यनगरी चैनल एवं एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सनसिटी चैनल। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: पूनम जी तावड़ो चाहे कितो भी पढ़ो लेकिन अपने जकी सखियां जकी है नी वो काम करनो नहीं छोड़े और अबार तो पूनम जी देखो तीन चार दिनों आंधी जकी है वा इतनी तेज आ रही है कि अपने सखियां है जकी दिन रात मतलब काम में लागोड़ी है
1: अरे काम में कहीं लगाटीन तो पानी को नहीं आवे और पानी नहीं जावे जब साफ सफाई भी की कर करा अटीन आंधी घर भरी जावे पूरा तो पानी की भी जरूरत रहे उन वास्ते
0: और देखो और जो समय ने वो आपा नो सिखावे कि पानी जिको आप खर्च करा नहीं बिना सोच समझ करना चाहिए
1: बिल्कुल
0: अपने सखियां बहुत तेज पानी है जो कि मैंने टूटिया चला चला और काम करे करो और अब जी थोड़ा पानी कम मारे तो अपन देखो धीमे धीमे मतलब टूटी चला पर काम कर रहे हैं तो आई अगर आदत अब शुरू शुरू रखा
1: तो
0: रोज
1: पानी
0: जीवन
1: बचत कर
0: तो पानी की बचत कर सका अपन जी की है पानी की समस्या भी नहीं आवे पर कहे नहीं कि आदमी जब सुख ज्यादा मिल जावे नहीं तो दुख है जिसको
1: भूल जाया करे बिल्कुल वो
0: तो
1: बिन शुक्र महीने इतना मशगूल हो जाया करे कि बिन पता ही नहीं चले कि कभी देखो शुक्र बाद दुख भी आया करे
0: बिल्कुल
1: और जीवन चक्र है जिसको चलता रहा करे
0: और देखो ये जीवन चक्र जब थे बात करी और सुख दुख की बात करी तो इन वास्ते देखो घर का काम तो आप करे यहाँ और पानी री लाइट रही इनसे बचत रही सागे सागे रुपये की बचत करना भी पूनम जी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज रही आज जरूरत है और आज रही जरूरत है माए अगर आपा पति पत्नी दोनों कमावे या परिवार चार सदस्य अगर बेचारों अगर आप योग्यता अनुसार रुपये कमाने रो सोचे तो मतलब कहवे कि एक परिवार है जो मजबूत बने अपने आर्थिक समस्याएं अपने कम हुए और खासकर अपने जो सखियां ने ब्याह तो देखो पूनम जी बहुत कहवे नी बुद्धिमान है कि रोजमर्रा रे जीवन में जो को वह हिसाब किताब करे नहीं तो बड़े सोच समझ करे और एक हिसाब बनावे बजट बनावे कि भी कितो खर्चो कठो और बीब में हूं आप रे थोड़ी बचत कर रहे और अगर कोई अपन ऐसा की पगा माते खड़ी हो परी कोई काम करे और पैसों बचावे तो वह और ही केवल चार चांद लगा दे
1: बिल्कुल सही की आराधना जी और आज रो युग तो बदलाव रो युग है शिक्षा महिलाओं ने ना केवल वैज्ञानिक रूप से और वैचारिक रूप से मजबूत करी है बल्कि उनके भीतर एक आत्मविश्वास और नुवो संचार भी करियो है अक्सर अपने समाज में ना सोच आ रहा करे कि शिक्षा रो अंतिम लक्ष्य केवल एक सुरक्षित नौकरी है या पची कॉर्पोरेट नौकरी पाणो ही जाए पर देखो एडो जरूरी नहीं है कि आप पढ़िया बाद में नौकरी ही करो अगर आप में कोई हुनर है तो आप घर भी संभाल सको और घरे बैठिया भी काम कर सको या कोई छोटो मोटो इज्जत माते भी आप काम कर सको हो
0: बिल्कुल और देखो जब आप बोले ना कि छोटो मोटो काम और काम कदे भी अपने आप में छोटो नहीं होया करे आप शब्द जी को कहवा कि छोटो है काम जितने हम आप कर रहे हैं पूनम जी तो वो काम बहुत भी ताकत हुआ अगर आप सिर्फ कहना कि बर्तन मांजना वो छोटो काम है पर जितने हम बर्तन मांजा नहीं विंडम आपने बताया कि अपने हाथ रही रेखा है जी की घसी जाए पानी की समस्या है बिरो सामना करना पड़े तावड़ो भी हुए रात भी आप सोचा कि नहीं बर्तन है जगह साफ कर रखा तो वो काम छोटो को नहीं झाड़ू लगाना हो चाहे बर्तन हो चाहे पोछा हो चाहे कपड़ा इस्त्री करना हो या आप मेरे अलावा घर रो कोई बिजनेस शुरू करना चाहो अगर आप पापड़ बना रहे हो बड़ी बना रहे हो अचार बना सगला काम जो है अपने आप में एक हुनर है क्योंकि पाक कला भी पूनम जी मतलब कहें आसान नहीं है पाक कला के अंदर बहुत सारी मतलब नाप तोल रखा तो वह चीज जी की स्वादिष्ट बने
1: क्योंकि लोग स्वाद चाहे जब घर जड़ी स्वाद जड़ी बनेला जदी लोग भी ने पसंद करेला
0: बिल्कुल
1: तो इंडिया में एक हुनर होना बहुत जरूरी है
0: और हुनर की बात कर तो इमें अपने सखियां जी की है मतलब कहवे नहीं माहिर है पाना ध्यान है कि एक कप चाय जब बनावा तो भी मैं कितनी चीनी डालनी है कितनी चाय पत्ती डालनी है कितना दूध डालना है और वो हुनर जो है सखिया ने कई बार आत्मनिर्भर बनाने वास्ते भी आगे प्रेरित करे करे

0: आकाशवाणी जोधपुर सु गणगौर बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनन री और आपने जी की डिग्रिया है जी की सिर्फ नौकरी वास्ते ही नहीं होया करे बे आपने शिक्षा है आपने डिग्रिया बहुत कुछ नयो करण वास्ते भी एक ताकत दिया करे आप अगर सोचा कि आपने डिग्रिया जी की है बे केवल कोई बड़ी कंपनी में या कोई सरकारी ऑफिस में ही काम आवेला ऐसा नहीं है आपकी डिग्रिया आप एक हुनर है आप एक आभूषण है आय का अपनी ताकत है कि ये ताकत ने आप कदे भी कठे भी कोई भी जगह पर आप जब मर्जी हुए आप हीरो काम ले सको तो आज की डिग्री है इन्हें एक कोई आप व्यवसाय जद करो तब भी आपने ये जरूरत पड़े क्योंकि आप जब व्यवसाय करो ना तो आपने बहुत सारी चीजें जरूरत पड़े जी बैंक रो खातो हो गयो आपने कंप्यूटर रो ज्ञान है आपने मार्केटिंग करने री जी की चीज की जरूरत पड़े तो इन वास्ते आप री डिग्रियां जी के वे आपने सहयोग करे और अगर कोई अगर व्यवसाय आप करा और विण समय अगर खान पान से जुड़ोड़ो कोई व्यवसाय हुआ और वो भी फिर पानीपुरी जी आप लोग स्वाद चटपट रहो ओहो तो कहनी ही कई बात है मुंह में ही कहें पानी घुल गया और सखियारे भी देखो मुंह में पानी जो लाग रही है घुल रही है तो जब खट्टे मीठे और चटपटे स्वाद पानीपुरी की बात करा तो ये पानीपुरी की दुनिया रमाए भी एक व्यवसाय है जिसको शुरू कर सके है और आज जी की अपने सगे स्टूडियो में एक बहुत ही सुंदर जोड़ी है दो बहनियारी जिके मैं एक रजनी सांकला है और ऐश्वर्या सांकला जिका एक लंबे समय से आपने खूबसूरत जोड़ी ने पानीपुरी व्यवसाय में अपना नाम है जिको कर चुका है तो अपने स्टूडियो माए पधार चुके हैं तो आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में रजनी जी और ऐश्वर्या जी आप लोग घने मानसून स्वागत
1: धन्यवाद मैम
0: तो रजनी जी आज आपने क्या लाग रही है आकाशवाणी स्टूडियो में
1: आप माने तो बुलाया इन बात ही बहुत खुशी है माने
0: तो ऐश्वर्या जी आप अनुभव बताओ केड़ो लाग रही है आपने
1: आज पहली बार ऐसा मतलब इंटरव्यू हुआ है हमारा तीन साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो थोड़ा नर्वसनेस हो रही है लेकिन काफी अच्छा लग रहा है
0: आप अभी आप युवा पीढ़ी में हो और आप बहुत अच्छी बात है कि एक छोटी सी उम्र में ही आप व्यवसाय जो है शुरू करने सोच लियो

0: जी। तो सबसे पहला मैं लोगों को जानना चाहवाला कि आप शिक्षा, आप रो बचपन, आप रो जिया शुरुआत है वह किन प्रकार हुई?
1: मैं एक छोटी मतलब कि बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली हूँ बिलोंग करा और मारे पापा मजदूरी करे वे कम टारो काम करता शुरू और मैं पांच बहना और एक भाई है मानो तो मतलब कि एक कोई होयो तो मन सा इंसिडेंट कि पापा मैं छोटा नहीं जद पापा राख में वो टक्की रो कोई लोर गियो परो जन व्यन आंख री पूरी रोशनी गई परी तो ही वे हिम्मत नहीं मारी मान हैंगा ने नहीं पढ़ाया और मोटा करिया और आज आप देख रही हो मैं इन प्लेटफॉर्म में था आप सब बरामी और आज दो साल पहला पापा दूसरी आंख रो भी पर्दो फाट गयो जन पच्चे डॉक्टर के यो कनी अब नहीं कर सके काम हिम्मत नहीं हारी
0: बिल्कुल नहीं आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है और जिस तरह से आप भावुक हो रहे हो आप बिल्कुल भावुक मत हो क्योंकि देखो आपरी जी की शक्ति है आपरी माँ आपरे सागे आपरो परिवार सागे है और आपरी बहन सागे है
2: पंख तो हर कनी हुआ करे पर उड़ान जदे ही मिले जन हौसला बुलंद होया करे और हवा बढ़ने अपन साथ दिया करे हौसला। तो ऐश्वर्य जी आप बताओ कि अक्सर अपने समाज में इन्हें मानी जावे कि डिग्री के बाद नौकरी करनी चाहिए जब आपने पानीपुरी रो काम आप शुरू करियो तो परिवार और मित्र रिचि की प्रतिक्रिया है वाह कहीं भी
1: मतलब कि ऐड हालात में गुजर रिया था कि माने कोई मना नहीं करियो काम वास्ते और मतलब उन टाइम एक बार एक पल ऐड आयो कि मौसम अलग हो गया और मैं माने सिर्फ काम माते ही ध्यान दियो और किन्नी लोगों की बातों माते कटे ही ध्यान नहीं दियो
0: बिल्कुल एकदम सही बात है कि अगर आप रो हौसलो बुलंद है आपने कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो लोगारी परवा कदी भी नहीं करनी अगर आप रास्ता सही है और आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपने घबराने की भी कोई जरूरत को नहीं क्योंकि हुए कहीं कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा सो अनोखो काम करे थोड़ा लीकू हट कर करे तो वो समाज नजर में बहुत ज्यादा आया करे और समाज भी बहुत बार यहाँ हुए कि समाज भी चीज री आलोचना करे पर भी आलोचना से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और आज आप दोनों यहाँ जोड़ी है जिसके आज माने मतलब एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हाँ आपने भी कई तरह राज यहाँ बता रहे हो कि समाज जिको है बहुत कुछ की होला जहाँ ऐश्वर्य जी अब आप बताओ कि थोड़ा सा मतलब मुश्किल हुई तो किन प्रकार मुश्किल हुई
1: तो फ्रेंड्स वगैरह आने में थोड़ा सोचते हैं कि क्या बात करेंगे आगे पढ़ाई शुरू की है नहीं की है रुक गई है क्या अभी क्या कर रहे हो आगे वो सब लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि जब हमने स्टार्ट मजबूरी में भले किया हो लेकिन अभी काफी अच्छा लग रहा है अभी काफी ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ कुछ बड़ा हासिल किया है हमने
0: बिल्कुल
2: तो बिल्कुल ऐश्वर्य जी जरूर बड़ा हासिल करियो यो आप और आज आपकी पहचान बन रही है आपके नाम सु के बीए पानी पूरी वाली तो पूरी आप सुजीरी ग्राहक ने ज्यादा अच्छी लगे या आटा ने ज्यादा अच्छी लगे
1: हम आटे की रखते हैं पूरी तो हमारे हिसाब से जो मतलब रेगुलर फ्लेवर हम रखते हैं इस हिसाब से रेगुलर ही अच्छा लगता है लोगों को।
0: अच्छी बिल्कुल जी एक बहुत अच्छी बात आपने पूछना चाहवा कि वो देर में लोग सोच रहे हैं स्टॉल है मेरा नाम बड़ो ही अनोखो है बीए पानी पूरी वाली तो जो को नाम है वो क्या शुरू हो
1: बी ए पानी पूरी वाली मतलब कि ये पहले किसी ने ऐसा नाम सोचा नहीं है हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने बी ए तक की पढ़ाई की हुई है तो और उस टाइम ट्रेंड में भी यही था कि वहाँ सब लोग बी टेक पानी पूरी वाली भी वायरल थी अच्छा। तो हमने उस हिसाब से सोचा कि हम भी ऐसा कुछ नाम सोचते हैं जो सबसे हटकर हो और हमने किसी का कॉपी नहीं किया हमारी ये ग्रेजुएशन हो रखी थी तो हमने सोचा हम भी बीए रख देते हैं जो सबसे अलग रहेगा पानीपुरी में और अपने राजस्थान में तो और किसी का भी इस नाम से लड़कियों का होगा नहीं स्टॉल
0: बहुत अच्छी बात है
2: तो आप पानीपुरी अलावा और कौन कौन सा चटपटा स्वाद है जिसको ग्राहक ने चखाया करो
1: पानीपुरी में होममेड बनावा और घरे होममेड में छोला टिक्की चाट भी बनावा बहुत भी वह भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करे छोले टिक्की चाट भी और माने स्टॉल में थे और उन पूरा स्टॉक खत्म हो जावे शाम तक
2: अच्छा अच्छी बात है
1: और इन साथ मिट्टी

0: इमली और गुठरी में बना हुआ, वह भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो आप मतलब इतनी तरह की चीजा रखो, तो एक दिन की तैयारी किन तरीका हो, मसाला पानी और दूसरी चीजा भी तैयार करने में कितो समय आपने लाग जावे?
0: समय तो माने नहीं, तैयारी में 5-6 घंटा लाग जावे, क्योंकि मैं मार्केट पहले फ्रेश सब्जियां लेने आवा, पची भी साफ धो परीन, पची भी पुदीना धनिया सब हो भी मिक्सी में पीसन, चटनी भी बनावा, पची भी पानी बनावा, आलू भी काटन उबाला भी पच मैश करा छीला वगैरह, तो दिन भर रो काम माने वही जाए।
1: अच्छा, तो पर शाम रे कितनी बजे तक आप स्टॉल लगा दो?
0: शाम रे 5:30 बजे मैं स्टॉल लगावा, 5:30-9 बजे तक स्टॉल रखा मैं।
1: अच्छा,
2: बिल्कुल ऐसे रे जी, जिया अभी है बताओ कि सुबह हूं ले शाम तक आप व्यस्त ही रहो, तो जिगे टाइम आप पानी पूरी रो व्यवसाय शुरू करियो, विण समय आपरे दिमाग में कई लाग रियो कि ओ व्यवसाय कितो चाली इरो कई रिजल्ट निकली, या आप कुछ भी नहीं सोचो कि चलो देखी जाए, आपरे मन में कई चाल रियो?
0: बिल्कुल, उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था तब हमसे पहले भी काफ़ी भैया वहाँ पे लगाते थे, तो उनका मतलब 2 महीने चलता था फिर रुक जाता था, तो हमें थोड़ा डर तो था उस वक्त, लेकिन जब शुरुआत की, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, हम जैसे क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे लोग मतलब खेतीबाड़ी का काम मतलब ज़्यादा करते हैं, तो उनको थोड़ा मतलब साफ़ सफाई और अच्छा खाना पसंद है, थोड़ा बाहर का कम खाते, तो उस हिसाब से जब हमने उन्हें ज़्यादा अच्छा देना शुरू किया तो फिर हमें सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिला वहाँ से।
2: बिल्कुल सही बात, की पानी दुकान है तो बहुत ज्यादा है। फिर भी वो वापस आप व्यवसाय शुरू करो तो कोई ना कोई पीछे कारण तो रहे, तो जो आप पानी बनाओ तो भी मैं इसको कुछ खास चीज डालो कि वो आपरी पानी पूरी जिकी है लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद आवे।
0: वो हाथरो हुनरी जे मयूट सीकन पानी बनानो शुरू करियो और वो हाथों अपना टेस्ट आदा जन लोगा ने नहीं बढ़िया लगे, और नहीं मैं हाइजीन नो पूरो ध्यान रखा, ग्लव्स पहरन खिलावा और पूरी साफ सफाई हाथे घरे सब कुछ बनान तैयार करा एकदम अच्छी तरह जन लोगन ज्यादा पसंद आवे।

0: तो सोशल मीडिया और डिजिटल रील्स जी किए वे आप रहे इन व्यवसाय ने आगे बढ़ाने में किन तरीकों में मददगार साबित हुई है?
1: पहला तो मैं सोशल मीडिया में तो नहीं था, मैंने कोई पेज वगैरह नहीं था, पचे बाद में मैंने गांव रे एरिया में स्टॉल लगाएड़ो जने बारे वाले लोग तक नहीं जा रही थी बात कि हाँ भाई स्टॉल लगाएड़ो और अच्छी चीज हैंगन खिला रही हम जने माँ ने कही रे वीडियो बनाना शुरू करियो और मैं एक वीडियो बनाई उन मत मोने पहली बार में 2000 व्यूज आ गया जद माँ की हमें अपन वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि लोग अपन स्टॉल मत आई देखी हाँ बढ़िया टेस्ट है जन अपने भी सपोर्ट मिली और वीडियो बनाना मान शादी में भी ऑर्डर मिलिया रिटायरमेंट में भी ऑर्डर मिलिया बर्थडे पार्टी में भी ऑर्डर मिलिया जाना वीडियो सपोर्ट हुई मैं आगे बढ़ रही इन वास्ते मैं मान काम वास्ते वीडियो भी बना रही

0: That's a GR music.
1: बिल्कुल जी, अभी आप बोले कि शुरुआत में आपका व्यू कम आया, विभिन्न प्रकार जब आप बिजनेस शुरू करियो उसे, तो जो पहले दिन हो, जो दिन आप पहले दिन स्टॉल लगाओ, विभिन्न दिन रो कहीं अनुभव रही हो?
2: पहले दिन जब हमने लगाया था तो सबसे पहले एक भैया कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा कि पानी में बिल्कुल टेस्ट नहीं है, ना नमक है, ना खट्टा है, ना तीखा है। तो हमने उसी वक्त ना उनकी बात का बुरा माना, हमने चेंज किया, क्योंकि हमें पता था कि इस लाइन में अगर फर्स्ट डे है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो हमने स्टार्ट किया और फिर हमने सही किया, आज वही भैया हमारे रेगुलर कस्टमर है।
1: देखो कितनी अच्छी बात है कि अगर व्यक्ति आलोचना सुनना सीख जावे तो वो व्यक्ति आगे बढ़े, नहीं तो कहीं अक्सर आप जब कोई व्यक्ति अपनी आलोचना करा तो आप भी सामने वाले व्यक्ति में ही कमी निकला कि नहीं इन्हें पुछ पतो नहीं, मैं लोग इतनी मेहनत करी और मतलब वो गलत बोल चले गए। तो आपने जी क्या बात बोली, इसको बहुत प्रेरणा मिलेगा आज का सुन रहा है कि आलोचना सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है तो भी वो आपने हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है। तो जी की आप बात बोली है तो जरूर जरूर सब वास्ते फायदेमंद रहे।
3: तो बिल्कुल, अब हमारे शादी पार्टी की भी बात करी तो स्टॉल में पानीपुरी खिलाना ज्यादा आसान है या शादी पार्टी में पानीपुरी खिलाना ज्यादा आसान है?
2: दोनों जगह ही, मैं दोनों जना बहना ही मैनेज करा तो उठ भी काम इतो ही जोवे और घर भी काम इतो ही जोवे, क्योंकि शादी में तो कई बड़ा ऑर्डर होवे जना ज्यादा पानी पूरी खिलाना रहे तो भी बट मैं दोनों जना मिलने खिलावा और स्टॉल में तो वो जना मैं काउंटर अलग देखो छोला टिक्की चाट रो और आप पानी पूरी वगैरह खिलावे, तो वो दोनों जना हर जगह दोनों जना मिलने करा मैं काम।
1: बिल्कुल जी, अभी आप बोले आप दोनों मिल रहे काम करो और जहाँ शादी में आप बहुत सारी चीजें आइटम वगैरह बनाओ और मतलब डेली में भी आप चीजें बनाओ, तो जी अभी तो थोड़ी देर पहले आप आलोचना की बात करी, तो कभी यहाँ भी हुआ है कि कोई परिवार या कोई इसी कोई सहेलियां या कोई सहेला रो ग्रुप आप रो तारीफ कर रहे है?
2: हाँ, तारीफ तो अब वीडियो में भी मैं आपने बतावा, मतलब मैं जट भी स्टॉल लगावा पार्टी वगैरह में सबर और रिस्पांस बहुत बढ़िया हो वे, क्या माड़ा मेहमान पानी पूरी खान गया जो थानी घनी तारीफ करी है, तो वे भी आगे कही हुआ मैं थाने बुलावा फ्यूचर में भेर लगाना हो तो माने स्टॉल, और मतलब की आलोचना टेस्ट मामला में अब आलोचना नहीं हो, अब तो सब टेस्ट पसंद ही करे भी ये पानी पूरी वाली रहो, जिन्हें भी पानी पूरी खाना हो नहीं तो वैसे तो यही क्या थाने विजिटिंग कार्ड दो मैं सीधे थाने लोकेशन मत पहुंच जावा।
1: बिल्कुल ऐसा जी, आप बताओ कि जितम व्यवसाय शुरू करियो तो कई तरह की परेशानी आई उसे, और जी अब फिलहाल ही अपना जोधपुर में दो दिन पहला बहुत बड़ो तूफान आयो, तो वीर तूफान में आपने किन प्रकार की परेशानियां हुई? हाँ, वो बताओ।
2: दो दिन पहले जब हमने लगाया था तो मतलब जो भी कस्टमर आ रहे थे वो कह रहे थे आज आपने स्टॉल लगाया है लेकिन 10 मिनट में तूफान आ रहा है, तो जैसे हमने कहा कि हाँ ठीक है माल बना हुआ है खराब हो उससे अच्छा तो जितने लोगों को खिला सकते उतने लोगों को खिलाएंगे, अगर नहीं होगा तो घर जाएंगे, और वो तूफान आ गया और मैं भैया और दीदी तीनों तूफान में ही धक्का दे के थैले को घर लेके गए थे स्टॉल को अपने पूरे सारा सामान समेट के, उस तूफान में भी हार नहीं मानी थी, और कस्टमर हमारे काफी अच्छे हैं जो रेगुलर कस्टमर है वो सब हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा सामान वगैरह सब इकट्ठा करवाते हैं, काफी सपोर्टिव रहते हैं।
3: बिल्कुल, सड़क पर स्टॉल लगाना एक आसान काम को नहीं, खासकर महिलाओं वास्ते, और मौसम भी मार ज्यादा एड़ी हुआ करे तो उन टाइम पर थोड़ी ज्यादा ही परेशानी आया करे, पर आप हिम्मत नहीं आ रही इन मौसम में मैंने भी और आप काम शुरू रहा के,
2: और भगवान की कृपा है कि मान स्टॉल खरोश तक नहीं आई, तो तूफान आयो नहीं तो एक बैनर तक अटी वटी नहीं हो, मैं लेन गई पूरा घर स्टॉल, मतलब की वह भगवान की कृपा ही है मन मत, मैं आगे भी अब बढ़ रही हूँ।
3: अच्छा, तो आप जो छोला टिकी

0: चाट बनाओ या दही पूड़ी बनाओ, तो उन टाइम आप किन तरीकों सर्व करिया करो ग्राहक ने?
1: डिस्पोजल प्लेट से अवियन में मैं सर्व करिया करा, और मैं स्पेशल हाइजीन वास्ते डस्टबिन मत पॉलिथीन लगा डस्टबिन रखा करा के ताकि ग्राहक अट्टी बट्टी कचरो नहीं फैलावे, और ग्राहक में जितनी हो सके उतनी सुविधा देवा, पानी ठंडा पानी कैंप पर भी लगाए हमारे, और जितनी फैसिलिटी हो सके नहीं उतनी पहले तो मैं काम शुरू करी जन माने सब घर बर्तन वगैरह सब कुछ आ, और स्टॉल भी माने कन खुदरो नहीं हो, मैं किराया मत स्टॉल ले ना या पचे उन मत लगाए शुरू में, तो पचे मैं धीरे धीरे जो बैलेंस बनियो जो खुदरो स्टॉल भी खरीदिया, अब उन्हें तैयार भी करवाइयो और स्टॉल सब सामान भी लेना या जितनी मैं इनकम कमे जो मानो परिवार चलोन वास्ते और स्टॉल चलोन वास्ते या मैं तक लगे या।
2: बिल्कुल ऐसे भी जी एक बार बताओ कि जद बोल रहे हैं कि मैं लोग सब मिल परा काम करा, तो आप दोनों बेने आ रहे माए मतलब जी को काम बांटो वो क्या बांटो, और कदिया भी हुआ कि आपस में थोड़ी नोकझोंक भी हुआ कि तू काम ज्यादा करो या तू कम काम करो, या आज मैं बहुत ज्यादा मतलब काम करो और तू बिल्कुल भी काम करो, इस तरह से छोटी मोटी नोकझोंक भी होती
3: है? हाँ, भाई बहन का रिश्ता है तो नोकझोंक तो होनी बनती है, और वैसे हाँ काफी मतलब समझदार अब थोड़ी मतलब कहते ना वो घर से बाहर निकलता है तो थोड़ी समझदारी अपने आप आने लगती है, तो इनको कोई काम होता है बाहर जाता है तो वो खुद ब खुद लगता है कि हाँ ये काम हमें कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉल इस टाइम लगेगा कस्टमर वेट करेंगे, दिमाग में वही रहता है अब, और थोड़ा काम में बिजी रहता है तो नोकझोंक अपने आप कम होती है।

0: कदी हो कि कस्टमर आयोड़ा है और पानी पता से आप बांट रहे हो और अचानक आप रो भी मन करियो है खाने की कुछ दो पुचका खा ले
1: ए मसालो बनावे नहीं उन टाइम मारो बहुत मन करे खाऊं ना मैं कह दूं मन्ने भी थोड़े खिला दो तले गिरा का वास्ते पचा आप के वास्ते
0: तो आप हमेशा टेस्ट करो कि भाई नो स्वाद
1: मैं पानी पूरी बनावा नहीं जब मैं पानी बनावा जाने नहीं खुद साइड में कटोरी निकाल टेस्ट करे भाई की करे टेस्ट सेट होयो नहीं होयो पहले अच्छी तरह बना पच्चीस स्टॉल मान ली जावन सर्व करा लोग
0: तो जी चटपटी बात चल रही तो एक चीज और बताओ कि अक्सर जब पानी पताशा आप खा चुके हैं मेरे बाद एक लास्ट में पापड़ी चाट बना देवा तो वह पापड़ी चाट बड़ी ही चोखी लगे ये कारण कहीं है
1: इन कारण सूखी पापड़ी में तालूर मसाला होवे साथ काला नमक रो फ्लेवर होवे जन वो और भी बढ़िया लगे
0: क्योंकि कोई भी हो पूरी चीज रो पेमेंट हुआ पर आज की पापड़ी चाट जी आप के वहां आ फ्री हुए इरो कोई कॉस्ट नहीं लगे तो कहीं इर वजह से बहुत ज्यादा स्वाद बन गया
1: हो सके फ्री जी ज्यादा स्वाद लगे
0: बोले पानी पता चाह पूरा हो चुके हैं फिर बात क्यों है की एक पापड़ी चाट तो और दो तो पापड़ी चाट बढ़िया बना दे कई बार यहाँ भी होते एक और दे
2: पानी भी एक्स्ट्रा
0: तो आप दे
1: मतलब और देनी पड़े गिरा करने नाराज नहीं कर सका एक्स्ट्रा मांगे जन एक्स्ट्रा भी खिलानी पड़े कोई एक एक्स्ट्रा मांग ले कोई दो एक्स्ट्रा मांग ले तो देनी पड़े
2: मना नहीं कर सके
1: हाँ पानी तो माने चटपट तो इतना बढ़िया लगे दो दो तीन तीन कटोरी पी जावे लोग इतना अच्छा पानी है
2: तो इन महीने पानी कितना फ्लेवर होया करे
1: माँ रेगुलर फ्लेवर बनावा क्योंकि मानो उठे एरिया में रेगुलर फ्लेवर ही चले अब बार तो उन हिसाब माँ रेगुलर फ्लेवर रहा कि हाथ इमली चटनी मीठो पानी भी रहा कि वो भी लोगों बहुत पसंद आवे
0: तो जी हाँ देखो आज वैश्विक अभिवाद दिवस भी है तो आप अपने माता पिता के बारे में कहीं कहना चाहोगे दोनों बहन
1: मैं यू इस कहने चाहवा मारे मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल करी है लाइफ में क्योंकि छह टाबर ने मोटा करना कोई आसान काम नहीं है और पापा मजूरी करता तो उन्हें हिसाब
0: आप बताओ
3: आज के टाइम में मतलब जब हम छोटे थे तब हमने सुना है लोगों से कि पांच पांच लड़कियां हैं कैसे संभालेंगे छोटा लड़का है तो वो सब काफी मुश्किल होता है लेकिन आज के टाइम में जब हम काम करते हैं तो वही लोग कहते हैं कि लड़कियों ने घर संभाल लिया है लड़कों से भी अच्छा तो ये सुन के काफी अच्छा लगता है
2: बिल्कुल आज बहुत सारे युवा साथी है जो नौकरी न मिलने से निराश है ये आप लोग छोटो काम शुरू करने से कतरा रहा है कि भाई छोटा स्तर मत मैं की कर शुरू करूँ मारकन तो इतना पाई को नहीं मैं क्या शुरू करूँ पर आप इन आकाशवाणी के मन सुवे युवा मन कहीं कहनी चाहो
1: जब मैं काम शुरू करियो जन मानकर ने भी पैया नहीं था माने भी ये नहीं मेरे फ्रेंड 2000 रुपये उधार दिया उन्होंने मैं काम स्टार्ट करियो आप छोटा स्तर में तो भी काम शुरू कर सको आप रो और उन टाइम आप यो मत सोचा करो छोटो काम है नहीं काम कोई भी छोटो बड़ो नहीं होया करे आपने आप रो काम जहाँ पहचान दिलाया करे तो आप छोटा स्तर भी आप रो काम शुरू कर सको
2: बिल्कुल कोई भी काम करो अभी शुरुआत तो छोटा रूप ही होया करे धीरे धीरे आगे बढ़ जाया करे
0: तो जी कदी यहाँ भी हुए कि आपने पानी पता चलो जी को आप स्टोर लगा रखे और बहुत सारी जी की सहेलियाँ हैं बे आवे और एक दूसरे ने मतलब यहाँ शर्त रखे कि आज सबसे ज़्यादा जी को पानी पता सो खाए वो ही पेमेंट करे या आज जी को बहुत ज़्यादा कम खाए वो पेमेंट करे कदी इस तरह भी प्रतियोगिता हुआ
1: हाँ यूँ चैलेंज हुई है मानो स्टॉल माते और वे जो चैलेंज करी हो वे नौ प्लेट खाई है पर जिम को आप गिव अप कर दिया कब मैं नहीं खा सकूं पचे वो पेमेंट करी है
0: तो एक व्यक्ति है हाँ मतलब आमतौर पर कितना पानी पताशा खा ले क्योंकि आपने तो अनुभव है
1: हाँ
0: तो कितना पता सा खा ले पानी पता सा जब
3: मैंने अभी तक जितने लोगों को खिलाया है ये मतलब 100 रुपए लगभग 100 रुपए क्योंकि इसमें 40-50 पीस हो जाते हैं तो एक आदमी कैपेसिटी इतनी होती है मेरे हिसाब से मैंने अब तक जितना खिलाया है वैसे लोग काफी अच्छा मतलब होता है जोधपुर वालों की तो कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है खाने पीने में
2: चटपट और तीखो ही पसंद करे तो जब स्टॉल में भीड़ रहे तो जब देखो कोई आदमी कितना ही खावे कोई कितना ही खावे तो आपने क्या ध्यान रहे कि भाई वो आदमी इतना खाया है इन्हें इतना पेमेंट लेना है और इतना खाया है इन्हें इतना पेमेंट लेना है तो वो दिमाग में आपकी कर रखो
3: शुरुआत में तो काफी दिक्कत हुई थी गिनने में कि किस मतलब कौन से कस्टमर के कितने हुए अभी भी कभी कभार हो जाता है लेकिन हाँ जब हम काम करते हैं जब मैं खिलाती हूँ और ये चार्ट काउंटर संभाल लेते हैं तो मैं गिनने में मतलब थोड़ा यूँ शांत रहती हूँ कि हाँ पहले ये हो जाए उसके बाद कोई डिस्कशन करना है तो उसके बाद करेंगे पहले कस्टमर फर्स्ट है हमारे लिए अच्छा। क्योंकि कोई कोई लोग बीच में पूछ लेते हैं ना कि आपका चैनल क्या है वगैरह ऐसे बात करते हैं ना तो फिर वो हट जाता है इसलिए ना बाद में गिनती भूल जाते हैं तो वैसा नहीं होता है मैं साथ में कर देती हूँ मैं

0: कस्टमर संभाल लेती हूँ, कोई सवाल जवाब होता है तो मैं जवाब दे देती हूँ, ये इनका फोकस पूरा होता है। तो कोई कोई लोग ऐसा पूरा भी मान जाते हैं कि इनके अंदर तो घमंड है, ये जवाब नहीं दे रहा हम पूछ रहे तो, लेकिन वो बात नहीं होती है, ये ना उनका ध्यान व गिनती पे होता है कि हाँ भाई वो भी रखना जरूरी है।
1: एक ज्यादा दे तो चलता है, लेकिन एक कम दे तो शायद कस्टमर भी टूट सकता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना।
2: तो आप स्टोर पे सबसे ज्यादा जगह कस्टमर उम्र रहा है?
0: हाँ, माने स्टॉल में तो सब उम्र रहा, ज्यादा तो टाबरी है आप मम्मी ने ले लेना वे क्या, मम्मी हालो माने तो बटे जीजी गिफ्ट भी देवे कणी कणी, माने पपड़ी भी फ्री में दे देवे, तो थे माने बटे जी स्टॉल में तो लेन हालो, तो टाबरिया मतलब सब उम्र आवे माने वटी ने।
1: अच्छा,
0: बुढ़ो लेन बच्चा तो हैंगन पानी पड़ी।

0: तो देखो आप बहुत बातें कर ली और पानी पूरी के बारे में आप व्यवसाय के बारे में बात काफी कर चुके हैं, तो भविष्य रमाए आप व्यवसाय के बारे में कहीं सोच रहे हो, आप कहीं सपना है जो को आप पूरा करना चाहो?
1: देखो मैं किराए रे स्टॉल में तो खुद रो स्टॉल बनाया अब यानी मतलब डिमांड है सब बारी के आई, अगर दुकान होती तो कितना बढ़िया रहे हो, तो मैं आगे ये सोचा कि स्टॉल में दुकान तक रो सफर भी आप री कृपा में जल्दी तय करा मतलब, और आप सब इतनी सपोर्ट कर ला तो मैं मानी दुकान रेस्टोरेंट सब वाला बस आप लोग सपोर्ट चाहिए और की नहीं।
0: बिल्कुल आप हौसला मेरी उड़ान जी की है, अगर मजबूत रह तो आप रहे जो को सपना है जो बहुत जल्दी पूरा भी होला, और आपने भविष्य वास्ते बहुत सारी शुभकामना भी देवा।
2: बिल्कुल, तो आज आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में अपने सागे लाजवाब स्वाद और बेमिसाल हौसला री मिसाल बीए पानीपुरी वाली रजनी साखला और ऐश्वर्या साखला, जो पानीपुरी रो जी को पानी होया करे वो तीखो और खट्टो होया करे, वो मिलने ही स्वाद है जी को बनाया करे, उन्ही तरीके वो सुख और दुख दोनों मिलने जिंदगी ने खूबसूरत बना दिया करे। तो आप दोनों रो कीमती वक्त आप माने साथे साझा करियो, इनरे वास्ते पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम री तरफ सु और माना सुड़न वाला सगला श्रोतागण री तरफ सु
0: आप बहुत बहुत आभार है।
1: मानी तरफ भी आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी टीम ने और सब श्रोतागण ने बहुत बहुत धन्यवाद, मानी तरफ भी मान सुनन वास्ते आपने हमें बुलाया और अपना कीमती समय आपने हमारे साथ बिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: तो बिल्कुल एडी, दो बहना ने बिल्कुल शाबाशी है कि वह आज इन स्तर पर काम कर रही है. और मतलब एक जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख ने नौकरी करो, अब आप इस तरह मत कोई छोटा मोटा व्यवसाय है वो भी शुरू कर सको. समाज यहाँ सोचे कि पढ़ लिख लिया हो तो आप नौकरी चढ़ जाओ.
1: देखो पूनम जी, समाज री बात जिकी है वहाँ कुछ चीजें ऐसी है जिकी अपन ने माननी भी जरूरी है. आप यहाँ नहीं कि वहाँ की समाज रो उल्लंघन करा, पर आप अगर जो अपन रस्तों अगर सही है, आप गलत काम कौन कर रहा है, तो फिर कई बार यहाँ है कि समाज री कुछ बातें जिकी है बाने अनदेखो कर आप अपनों कैरियर है जिको बनाना जरूरी है.

0: पुनः जी पानीपुरी की बात करें तो देखो आपने अलग अलग राज्य में पानीपुरी ने अलग अलग किया जाए, जहाँ उत्तर भारत में गोलगप्पा कहवा और इमें कहें कि आलू छोटा भरीजे और तीखोपन बहुत ज्यादा होया करें। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें या असम की बात करें तो बड़े इन पुचका किया करें और आलू और इमली रो पानी इमें डालिया करें साग मिला और इमें छोला जिका है काला वाला छोला वह डाल लीजिए, सफेद छोला है जिका नहीं डाले और उड़ीसा रे माए है जिका इन्हें गुपचुप नाम से पुकारे जावे।
1: बिल्कुल, और पानीपुरी रो जो पानी करें वो पाचन वास्ते भी बहुत फायदेमंद रहा करे क्योंकि उनके मायने इमली होया करे, पुदीनो होया करे, जीरो होया करे, हींग होया करे, तो सब पाचन मायने सहायक होया करे चीजा।
0: और हमारे तो देखो गर्मी की छुट्टियां हैं पूनम जी, तो बच्चा जी का है अपने कोई ना कोई फरमाइश है जी की करता ही रहे और खासकर ये सब चीजें ज्यादा फरमाइश होया करे।
1: बिल्कुल,
0: और पानी पूरी रो जो पानी है जो बना वो तो बिया भी आप मतलब आम दिना में भी बना पर अगर पिया तो सेहत वास्ते अच्छा ही है। और आप बोल रहे हैं पूनम जी की कुछ योजना भी है जिसका लाभ उठा सके।
1: हाँ बिल्कुल, सरकार योजना भी चला है क्योंकि कोई महिला आर्थिक तंगी की वजह से आप स्टार्टअप नहीं कर पावे तो सरकारी योजना है जैन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, तो उनके सहारे से आप कोई भी छोटे मोटे व्यवसाय है वो शुरू कर सको। हाँ
0: बिल्कुल, और देखो ये व्यवसाय जी का है नी पूनम जी आपने कुछ नयो करने मतलब एक प्रेरणा देवे। आप देखो कि आज अपन दो बहनों मिली तो अपन पता चले कि पानी पूरी और उस काम भी व्यक्ति आप आत्मनिर्भर बनपुर बहुत कुछ कर सके।
1: बिल्कुल,
0: मेरी मांग है नी भी अनुसार अपन अगर अपन कोई भी काम करा पूनम जी तो आप सक्सेस है जिसका जरूरी। और सबसे बड़ी बात है मेहनत और लगन री, अगर आपने मन में मेहनत करने की इच्छा है, आप लगन है, आप में समर्पण रहा भाव है, आप कुछ नयो सीखो। और आजकल तो पूनम जी भी देखो कि इतना मतलब वेबसाइट है बन गई बट वो आप नई नई चीजें जिकी है, नए नए आइडिया जो है वो ले पर आप कोई भी काम है जो शुरू कर सको।

0: तो देखो पूनम जी, आज अपना शक्ति बोले कार्यक्रम है जिसको मैंने हमारे से ले रहा है। तो आज रहे शक्ति बोले कार्यक्रम में आप सगी दो सखियां पूनम देवड़ा आराधना जोशी, आज रही प्रस्तुति ही राजेश लामरोड।
1: बिल्कुल, और संयोजन हो मनीष सोलंकी रो, इनके साथ ही कार्यक्रम रो समय भी पूरा होने लागे है। तो आप दोनों सखियां ने दिराव सी
0: चाला
1: राम राम, राम।

0: कौर, यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते।
1: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तु

0: की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण

0: स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की यह आवाज, साथ में मोहम्मद रफी बेटे बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों में, शैलेंद्र की रचना थी और सल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से संवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

0: हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।
1: कह दिए होश में आ।

0: आँखों की बुझा लूं तो चले जाएगा, कह दिए होश में।
1: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत तो की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हो आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई। आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा जी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना?
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती है, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती है जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं। और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए, वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गायकी जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
2: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता है ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया
2: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
2: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे। हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी।

जी बिल्कुल, और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
2: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं? हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मंगोड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी।

0: कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।

0: क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
0: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
0: हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगे?

0: अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
0: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
2: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था, आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म त्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे, संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
3: यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
4: अच्छा,
3: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
0: गहने बनवाता था कि नहीं?
3: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
0: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
2: इतने में एक आदमी

0: आकर विमल सिंह से बोला,
1: चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
2: हाँ है तो, मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
1: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
2: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
1: चौधरी मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
3: अच्छा,
1: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
4: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों धत्ते रे लालची?
1: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
2: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं, वहां तो गहनों से प्रेम है।
0: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयास

0: प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: हाँ तो मंजू जी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
6: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
5: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
6: और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
5: शुभकामनाएं
6: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
5: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
6: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे फायदे बनाने।
5: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है जी. और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है.
1: बिल्कुल. और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं.
0: बिल्कुल.
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं. और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है. 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया. इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है. तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं. और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है. और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है. बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती. केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं.

0: और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना,
0: और उसका कारण भी है
1: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है, ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
0: नहीं
1: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो अगर बच्ची देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही नहीं चलता था।
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहां तक एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता है वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
0: और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बात, बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबसे नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन लें।

0: हाँ
1: तो देखिए,
0: तो
1: अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस

0: का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
0: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई, तो तबियत खराब हुई, तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
1: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
0: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
1: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है, दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
0: नहीं होना चाहिए।
1: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है, इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
0: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
1: अरे हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है जी।
0: और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, बेहतर रखता है कहना चाहिए।
1: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, हाँ। आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को दिला सकते हैं।
1: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे है ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना, मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मंगौड़ी 1 कप, मंगौड़ी 1 कप, आलू
0: चाहिए
1: आधा कप, आलू 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेज पत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती है सखी, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा, पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी

0: भी हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्ठी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें पांचे, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें। और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद लें। जी, गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खूखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खूखे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
4: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
4: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
4: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
4: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
4: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
4: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
4: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में।
4: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें

0: बच्चों में डालनी चाहिए?
1: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए
0: जी।
1: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है। तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
0: छोटे बच्चों के लिए।
1: छोटे बच्चों के लिए एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए, जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0-3 इयर्स मतलब बचपन, पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे, खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
0: बिल्कुल
1: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
0: ये हम सभी के मामले में करें।
1: हाँ,
0: चाहे बच्चे हो
1: या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
0: टेढ़े मेढ़े
1: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
0: चॉकलेट,
1: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा।
0: हाँ।
1: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
0: ओके,
1: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
0: तो हमको कहीं बाहर
1: क्रेविंग नहीं होता है, बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो

0: जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना हो, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि

0: डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की। डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
0: लेकिन
1: हैं।
0: नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है तो नस एक ऐसा एरिया होता है

0: स्पॉट दिखाई देता है।
1: ओके
0: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
1: लेकिन
0: हैं।
1: नस तक,
0: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
1: जी।
0: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरियाज अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
1: जिसकी हमने चर्चा की।
0: एग्जैक्टली,
1: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
0: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
1: हाँ।
0: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
1: ये बहुत खतरनाक है।
0: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
1: अच्छा।
0: पर असलियत ऐसी नहीं है, असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर
1: नीचे की
0: होता
1: तरफ
0: हो,
1: होता है। हाँ।
0: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है,
1: बिल्कुल
0: तब
1: बिल्कुल
0: जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम बात है।
0: सेम बात यहाँ पे है, फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है, तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं, हाँ उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है, मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है, तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है, नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे से, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने

0: में आ गई।
1: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन हड्डी जो होता है जबड़े का उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
2: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
2: बिल्कुल
1: ये रूल होता था घर का, आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
2: ये तो खाना ही पड़ेगा।
1: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
2: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
2: ओहो,
1: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे, तो मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
2: बहुत सही है, बहुत सही है।
1: तो ये जो दुलार है ना,
2: ये बहुत नुकसानदेह है।
1: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए, इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
1: श्योरली। तो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
2: क्या बात है, महबूबा।
1: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
2: सुनते हैं।

0: लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है, और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना,

0: दांतों के ऊपर ही नहीं, दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली. वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों की अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है. दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है.
1: ओके.
0: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस.
1: फ्लॉस के लिए वो
0: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है. अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे. अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन. अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं, कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है.
1: ओके.
0: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है. तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है. और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है, तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
1: जी,
0: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के. फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है.
1: हाँ.
0: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में, अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है. अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना. वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है. वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है. वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग. पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे. इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट. बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है, वो सब में आता है.
1: ओके.
0: सेम ही आता है. ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है. जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे, जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो, तो वो थोड़ी महंगी जाती है. और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है. क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो, या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए. पर यंग बच्चा है, जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है, वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है. लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है. उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है.
1: ओके.
0: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है.
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है.
0: हाँ जी.
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे.
0: चलेगा. तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में. पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की.
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों की बीमारी नहीं है. ये पहले समझने वाली बात है. सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है. बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है. लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए.
1: ओके.
0: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है. आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है, उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है. वो हड्डी जब गलेगी, तब उसका सपोर्ट जाएगा.
1: यस.
0: तब दांत हिलेगा.
1: तो हड्डी मामला है.
0: एग्जैक्टली. वो एक दिन में होता नहीं है. पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं. उसके भी चार स्टेजेस है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं. लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है. उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: ये थोड़ा विजिबल साइन है,
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: लोग आपसे दूर जाने लगते
0: हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड टिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है,
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू,
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है,
1: बिल्कुल।
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो,
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीख,
0: क्योंकि
1: आप
0: करना सीख।
1: एग्जैक्टली, क्या बात है, सुनते।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है, आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स।

0: या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
1: बहुत कम है,
0: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक।
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है।
0: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसा कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: Exactly.
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अच्छा यह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: आवाजों का जादू इस कदर छा जाता है कि कदम खुद ब खुद रेडियो की तरफ खींचे चले आते हैं। और इस आवाज का नाम है नीतीश। साल के 365 दिनों में से आज 1 जून यानी इस साल का 152वां दिन, 151 दिन हमारी जिंदगी की किताब में दर्ज हो चुके हैं और 214 दिन अभी भी हमारे इंतजार में है। वक्त की सुइयां आगे बढ़ती रहेगी, कैलेंडर के पन्ने बदलते रहेंगे, साल दर साल गुजरते रहेंगे, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, वो है आपका और हमारा प्यार। और भला ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसे गीतों से प्यार ना हो। शाम तो वैसे भी हसीन होती है और पर और सुहानी हो जाती है जब दिल की पसंद के नगमे है ना हवा में गुल जाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी पसंद के गीतों, अपने संदेशों और ढेर सारी यादों के साथ। और इन्हीं यादों के साथ मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल, इस आवाज का नाम आज की शाम आपके साथ राहुल। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत कुछ मजेदार सी लाइनों से कर दो तो कैसा रहेगा। किसी ने बड़ा खूब कहा ना कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है दोस्त जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। आज भले ही जमाना डिजिटल हो गया है लेकिन भावनाओं की स्याही जो है वो आज भी सूखी नहीं है, क्योंकि आज भी आप हमें अपने दिल की बातें, अपने अपनों के पैगाम और अपनी पसंद के गीत लिखकर भेजते हैं और हम उन्हें प्यार से सजाकर लेकर आते हैं युवा पसंद फरमाइशी कार्यक्रम में। तो जुट रही है हमारे साथ इस आवाज का नाम राहुल और आज विशेष प्रोग्राम युवा पसंद फरमाइशी ओनली ऑन 102.1। और यहाँ गीत है, आपकी पसंद के एहसास हैं और आपकी खूबसूरत सी भावनाएं हैं। पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे आज की शाम का पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: श्रोताओं, पे आपने सुना फिल्म कॉकटेल 2 का गीत तुझको अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की युगल आवाज में, और फिलहाल आप युवाणी एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन एफएम 102.1 पे नीतेश और राहुल के साथ।
1: जय बिल्कुल, सवाज का नाम राहुल और आपका फरमाइशी प्रोग्राम जहां गाने सिर्फ बजते नहीं हैं बल्कि रिश्तों की खुशबू लेकर आते हैं, जहां आप हमें अपने चाहने वालों के नाम, उनकी पसंद के गाने और दिल से निकलने वाले जज्बात भेजते हैं, कभी खत के जरिए तो कभी मेल के जरिए। और बची कुछ फरमाइश हमारे साथ जो है सबसे इजी माध्यम हमारा जो है व्हाट्सएप के जरिए आ जाते हैं। अगर आप भी किसी अपने के लिए कोई भी गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमें हमारे इस एड्रेस पर भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल जी हाँ राहुल, जो हमारा ऑफिस एड्रेस है वो है आकाशवाणी जोधपुर पावटा सी रोड, जो हमारा मेल एड्रेस है वो युवा पसंद जोधपुर @gmail.com, और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो है 9413329359।
1: जी बिल्कुल, आपका संदेश पहुंचेगा और आपकी फरमाइश ज़रूर बजेगी आपकी रेडियो पर। तो चलिए दोस्तों, रिश्तों की मिठास, यादों की खुशबू और दिलों को जुड़ने वाले गीतों का यह सिलसिला शुरू करते हैं। और आज की जो पहली फरमाइश है वो आई है बिजीस जोधपुर से, अभिषेक, कुलदीप, सोनल, राजमंदोज, अमित और सुखराम की तरफ से।

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन एफएम 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ।
1: जी बिल्कुल, प्रोग्राम युवानी को एंजॉय कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम बड़ा ही खास, बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम आप फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं और युवा पसंद फरमाइशी कार्यक्रम में जो है वो फरमाइशों का पिटारा खुल चुका है। अगली फरमाइश भी हमारे सामने आ चुकी है। कार्यक्रम युवानी युवा पसंद आपको हार्दिक नमस्कार लिखते हैं और कह रहे हैं कि एक नगमा सुना दीजिए और इन्होंने फिल्म का नाम बताया है लव आजकल, गीत है चोर बजारी और ये शख्स हैं भोपाल के राजस्थान से जिनका नाम है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से, और लिखते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपका मैसेज भी शामिल करेंगे और आपका जो मनपसंद गीत है वो भी बजाया जाएगा। जी बिल्कुल, बजा दीजिए इनका फेवरेट वाला सॉन्ग।

वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम यौनिक को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप, और ये आप फरमाइश कार्यक्रम चल रहा है। फरमाइशों का पिटारा खुल चुका है, अगली फरमाइश बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, और वो ये है कि भाई गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर सीता और गीता, साथ ही साथ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से भी फरमाइश आई है, जो कि है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल डॉक्टर अमनदीप, और साथ ही साथ बात करूं मैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की तरफ से। अगली फरमाइश जो है वो है दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, मोखेलाल वर्मा की तरफ से, और साथ ही साथ पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह की तरफ से। आप और मिलकर सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन समझ का ट्रैक।

दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न।

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जहां मंडे स्पेशल फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है और वही देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया और इस बार आईआईटी दिल्ली जोन के छात्र शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक पहली प्राप्त की। और राहुल, खास बात यह रही कि टॉप तीन में आईआईटी दिल्ली जोन का दबदबा देखने को मिला है, जहां कबीर सिल्लर दूसरे रैंक पर और जतिन चहर तीसरे रैंक पर थे।
1: जी हां, इस वर्ष जेईई एडवांस 2026 में 179,694 स्टूडेंट ने जो है वो परीक्षा दी थी, जिसमें 56,880 स्टूडेंट उम्मीदवार जो है वो सफल घोषित हुए। और उम्मीदवार जितने भी जिन भी लोगों ने अपना ये जो एग्ज़ाम दिया है, इसका परिणाम जो है वो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है jeeadv.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, jeeadv.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप अपने रिजल्ट देख सकते हैं।
0: बिल्कुल राहुल, और इसी जेईई एडवांस के सफर को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज के जो खास गेस्ट हैं उनसे हम बात करते हैं। जी हाँ, जेईई एडवांस 2026 रैंकर 117 जिन्होंने रैंक प्राप्त की है इस बार के रिजल्ट में, वो है आदित्य सारन, जिसे बात की है राहुल ने और इसकी प्रस्तुति है राजेश लामरोड की। तो चलिए इस इंटरव्यू को सुनते हैं।
1: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवानी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और एज वी नो, जैसे कि हम सभी को पता है आईआईटी जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और इस एग्जाम में रैंक 117 प्राप्त करने वाले आदित्य सारण हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आदित्य, मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
2: जी, मेरा नाम आदित्य सारण है, मैं जोधपुर का निवासी हूँ और मेरा मूल गाँव भोपालगढ़ के पास कुड़ी है। मैं 2 सालों से आईआईटी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ कोचिंग में, और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना जोधपुर में 11th और 12th CBSE के थ्रू अपने 12th क्लासेस भी कर रहा था।
1: ओके आदित्य, मैं जानना चाहूंगा आपसे अभी जो आईआईटी की जो तैयारी है वो कब दिमाग में आया, कब शुरू हुई, किस तरह से, इसके पीछे की क्या कहानी है?
2: एक्चुअली आईआईटी के बारे में, मैं बचपन से ही दिल्ली में रहता था और वहां पे दिल्ली आईआईटी के पास में मेरा घर था, तो बचपन से मेरे दिमाग में सेट था कि करनी है तो आईआईटी ही करनी है। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मेरे जो अंदर इंटरेस्ट है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स साइंसेज एंड दीज टेक्निकल स्टडीज, वो भी डेवलप होता रहा और 9th तक आते ही कन्फर्म हो गया कि PCM लेके आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है।
1: ओके, आईआईटी जेईई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है आपने किस पर्पस से जो है वो इस एग्जाम के बारे में तैयारी करी है, तो आगे की क्या स्कोप होते हैं, आप जेईई एडवांस में अच्छी रैंक प्राप्त कर क्या और चीजें कर सकते हैं, आप क्या होता है इस एग्जाम के बारे में बताइए।
2: एक्चुअली जेईई एडवांस में अच्छी रैंक प्राप्त करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जेईई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज, आईआईएससी और ट्रिपल आईआईटीज से लेके काफी सारी ऐसे कॉलेजेस है जो एडमिशन आईआईटी जेईई के थ्रू देती है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि आईआईटी के अंदर जाके जो प्रेस्टीजियस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जो कंपटीशन होता है, जो प्लेसमेंट ऑफर होते हैं, वो आईआईटी उन सब के अंदर एक प्रीमियम कॉलेज है। और सिर्फ आईआईटी की बात ना करें तो आईआईटी एडवांस की जो रैंक है वो ट्रिपल आईआईटी और आईआईएससी शिवपुर, ऐसे काफी सारी और कॉलेजेस भी है जिनमें आपको काफी सारे कोर्सेज के अंदर सीट के लिए काम में आता है।
1: ओके आदित्य, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने जब से इस एग्जाम की तैयारी शुरू करी है, तो होता क्या है ना कि हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, तो आपकी क्या स्ट्रेंथ थी, किस सब्जेक्ट पर आपको लगता था कि इस सब्जेक्ट पर मेरी कमांड बहुत अच्छी है, और कहाँ आपको लगता था कि यार मुझे इस सब्जेक्ट पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है?
2: वैसे स्ट्रेंथ की बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी शुरू से ही अच्छी रही है। बहुत शुरू शुरू में लगता था कि मैथ्स मेरी थोड़ी वीक चल रही थी, बिकॉज जब तक मैं 10th में था मैंने इतने अच्छी लेवल की मैथ्स पढ़ी नहीं थी। जो आईआईटी जे लेवल की मैथ्स होती है वो एक्चुअली 10th से काफी ऊपर होती है, और एकदम ट्रांजिशन करके 10th से 11th में आते हैं तब आप वो पढ़ते हो, तो एक बार को एक बैकलैश सा फील होता है कि इस तरीके तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ये नहीं कर पा रहे हैं। तो शुरू शुरू में लगता था कि ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी क्योंकि

0: उसके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो भी थोड़े आसान होते हैं, उनमें अच्छे से कोप अप करना, उनको समझना भी आसान होता है, बट मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि रीजन मैं आपको बता चुका हूँ।
1: ओके आदित्य, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि सभी को हम देखते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे वो ऐसे आईआईटी नीट एग्ज़ाम की कोई तैयारी हो, होता क्या है ना कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई गलती जो है वो कर ही देते हैं, किसी न किसी रूप में हो जाती है, ठीक है। तो आप वो क्या बताना चाहेंगे कि भाई यार ये गलती मैंने करी है, ये आने वाला एस्पिरेंट इस गलती को तो बिल्कुल भी ना दोहराए, आपसे ऐसी कुछ कुछ छोटी मोटी कुछ गलतियाँ हुई जो आप बताना चाहते हैं कि यार अगला जो एस्पिरेंट आने वाला जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो इस गलती से थोड़ा संभल कर रहा है।
0: देखो, ऐसे तैयारियों में सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप मान लो आपकी किसी मॉक टेस्ट के अंदर, किसी नॉर्मल टेस्ट के अंदर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो एक लेट डाउन सा फील होता है सबको, बट उस लेट डाउन से जो कोप अप नहीं कर पाते वो किसी की इनएबिलिटी होती है, किसी के लिए वो गलती होती है। तो मैंने जब मेरे स्टार्टिंग में एक दो पेपर हुए थे, वो थोड़े टफ लेवल के पेपर भी थे, उसमें ऐसा नहीं था कि मेरी रैंक अच्छी नहीं आई या फिर मेरा बहुत गंदा गया, बट मैं जिस तरीके से चाहता था वो मैं कर नहीं पाया उस पेपर के अंदर। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप अपने स्टैंडर्ड क्या सेट करते हो। अगर आपने अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटी से ज्यादा अपना स्टैंडर्ड सेट करा है और फिर आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए मतलब बहुत दर्दनाक दर्दनाक होता है बाद में, जब आपने वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पा रहे होते हो। कोई भी एक स्टूडेंट होता है वो हमेशा एक दिमाग में लेके चलता है कि हाँ, मेरे को इस तरीके की पढ़ाई करनी है, इतनी मेरे को रैंक लानी है, जो कि सही नहीं होता है कि ऐसे दिमाग में लेके चलना, क्योंकि पढ़ाई करते समय बस हमें पढ़ाई करनी है, रैंक जो आएगी वो हमें मंजूर होगी, बट आपको भी पता है कि बच्चों के दिमाग में चीजें तो आ जाती है और उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, और प्रोग्राम में बातचीत में आगे बढ़ेंगे। आदित्य, मैं एक खास बात आपसे जानना चाहूँगा, आजकल जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया जो है वो कई जगह ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आजकल की जो इस एज के जो और बच्चे होते हैं हमारे आसपास सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसी में अपना समय जो है वो व्यतीत कर देते हैं और पढ़ाई जो है वो इस चक्कर में पीछे रह जाती है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि आपने इस जो है सोशल मीडिया के कल्चर से अपने आप को किस तरह से दूर रखा और जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो इससे किस तरह से बच सकता है।
0: सही बताऊं तो सोशल मीडिया कल्चर में मैं ज्यादा पढ़ा ही नहीं था। 9th क्लास के अंदर मैंने मतलब कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम खोला था, फिर वो वापस बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को कुछ लगा नहीं इंस्टाग्राम के अंदर। आप रील्स देखो, आप ये सब करो, वो मतलब मेरे टाइप की चीज थी नहीं, मेरे को पहले ही पता था ये तो मैं नहीं करूंगा। और उसके बाद से 10th के बाद तो मेरे पास ना मतलब खुद का मोबाइल भी नहीं था, और मतलब 9th तक मैं खुद का मोबाइल रखता था, 10th में मैंने मेरा मोबाइल छोड़ दिया। मोबाइल के साथ साथ कोई भी मतलब मोबाइल ऐसा भी नहीं कि मैं मम्मी का लेके थोड़ा चला रहा हूँ, बस मोबाइल अगर उठाना है तो पढ़ाई की किसी चीज के लिए उठाना है, फिर से किसी पढ़ाई के रिलेटेड चीज के लिए मैं मोबाइल का यूज करता था, और 10 से 15 मिनट से ज्यादा मेरे मोबाइल का यूज होता भी नहीं था दिन के अंदर। तो सही बताऊँ तो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट में इतना आया नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से ही सोशल मीडिया के अंदर होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह इनके ऊपर, यूट्यूब पे वो अपने वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसा है कि दिन में काफी टाइम होता है हमारे पास में, अगर हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो। अगर वो एक लिमिटेड सेट रिस्ट्रेंट टाइम के अंदर उसे चलाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे कोई रील्स बनाता है, तो अब सबसे बढ़िया चीज तो ये होगी कि रील्स बनाना बंद कर दो, बट अगर बंद करना नहीं चाह पा रहे हो या फिर बच्चे हैं नहीं हो रहा है, रील्स बंद नहीं हो रही है, तो ये है कि उसे रेस्ट्रिक्ट करो, आधे घंटे करो, आधे घंटे से 10-15 मिनट भी ले आओ, एग्जाम के आसपास आ जाओ तब एक बार रोक दो। तो ऐसे जब कंट्रोल वे में करोगे तो ठीक है, वो थोड़ा आपको रिफ्रेशमेंट भी देगा, उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बट सबसे सही तो यही होगा कि कंप्लीटली सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, क्योंकि वो कहीं पे भी हेल्प नहीं करने वाला। आप ये भी देखते हो कि रील्स के अलावा अगर पढ़ाई की कोई भी चीज देख रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसको दो टीचर दो तरीके से समझाएंगे, दोनों तरीके अगर अलग तरीके दोनों सही हो सकते हैं, बट वो थोड़े अलग हुए तो बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे। तो पढ़ाई के रिस्पेक्ट में मोबाइल लेना भी सही नहीं है अगर उस ऐसे देखे तो सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में मोबाइल से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आपने सही तरीके से जो है वो सोशल मीडिया को लेकर बच्चों को सही जानकारी दी। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितने बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेई एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई खास बात आपकी तरफ से?
0: बस एक ही खास बात है कि चुपचाप पढ़ते रहो, मेंस में अच्छे आ जाए खराब आ जाए उनमें ना उड़ना।

0: है ना यूं बैठ जाना है। और लास्ट मोमेंट तक, जैसे हमारा 17 मई को एग्जाम था इस साल, तो 17 मई के शाम की 5:30 ना बजे तब तक बस लगे रहो।
1: मतलब जो जोश आपकी आवाज़ में और जो स्लैंग जिस तरीके से बता रहे हो, आपका जोश बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और इस बातचीत से जो बच्चे स्पेशली जो JEE एडवांस है और नीट की परीक्षा की तैयारी वाले जो सुन रहे हैं, वो वाकई जो है आपसे, आपकी इस बात से ज़रूर इम्प्रेस हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सारण। रैंक 117।
2: श्रोताओं, भी आपने सुनी फोन आउट भेंट वार्ता आदित्य सारण, JEE एडवांस 2026 117 रैंक प्राप्त से राहुल की बातचीत। इसकी प्रस्तुति थी राजेश लामरूड की। और राहुल आज जो है युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है और आदित्य ने भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। तो चलिए सबसे पहले इनकी फरमाइश को सुनते हैं और फिर इस गाने के बाद ऑनली ऑन FM 102.1 पे नितेश और राहुल आपकी फरमाइश का भी वेट करें। तो जल्दी से जल्दी हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक जी आपका दोस्तों एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को, हम सभी को पता है, IPL 2026 खत्म हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी इसकी बातचीत के चौके और छक्के चल ही रहे हैं साहब।
1: और एक तरफ RCB ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर अपने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया है कि कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है भाई ये सपना है या फिर हकीकत।
0: बिल्कुल सही कहा, यकीन नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है, 15 साल की वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इस बार राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए ऐसा खेल दिखाया है कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी सोच रहे, भाई हम 15 की उम्र में होमवर्क नहीं कर पा रहे थे और भाई साहब तो मतलब अवार्ड पे अवार्ड जीते जा रहे हो, बात क्या है।
1: बिल्कुल राहुल, और तो इससे एक चीज हमें सीखने को मिलती है, RCB कहती है कि हार मत मानो और वैभव कहता है भाई उम्र नहीं हुनर मायने रखता है।
0: अब बात है, चलिए क्रिकेट की बातों का तो थोड़ी देर तक यहीं पवेलियन भेज देते हैं इनको और बढ़ते हैं आपकी अगली फरमाइश की तरफ। और ये शानदार सी फरमाइश किन्होंने भेजी, बता दीजिए नाम इनके।
1: राहुल, पद्मापुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा।
0: साथ ही साथ गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भी फरमाइश आई है, जो कि है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की तरफ से। साथ ही साथ एकता कॉलोनी रोहतक से है सीताराम काकड़ा, बबीता बोट, निखिल काकड़ा, तन्वी बोट। और वहीं साथ ही साथ रिंगनी छत्तीसगढ़ से है हमारे पास, इनकी फरमाइश है दिनेश वर्मा है, करुणा वर्मा है।
1: वही साथ ही साथ जोधपुर से हैं दीपक पवार,
0: पटेल नगर मलोड से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गंदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू और इनकी पूरे परिवार वालों की तरफ से फरमाइश आई है। तो आप और मिलकर एंजॉय करते बिना किसी देरी के इनकी फरमाइश को, म्यूजिकल ट्रैक।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: दोस्तों, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत बताई क्या है? वो वक्त आने पर जरूर बदलती है।
1: राहुल, आज प्रोग्राम में ये डायलॉग कैसे आ रहे भाई, और वो भी यार माधवन का।
0: दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ अपने किरदार नहीं निभाते बल्कि उन्हें जीते हैं, और ऐसे ही एक शानदार अभिनेता हैं आर माधवन, जिन्होंने अपनी सादगी, अभिनय और व्यक्तित्व से कई, मतलब बहुत सारे, यानी लाखों दिलों में जगह बनाई है।
1: बिल्कुल सही कहा। और फिल्म थ्री इडियट में निभाया गया फरहान का किरदार और उसका मशहूर डायलॉग अब्बा नहीं मानेंगे आज भी लोगों की जुबान पर है। दिलचस्प बात यह है कि इस किरदार की भावनाएं माधव की असल जिंदगी से भी काफी मिलती जुलती थी।
0: शायद यही वजह है कि उनका अभिनय इतना सच्चा और दिल को छू लेने वाला है, दिल को छू लेने वाला है। और इनकी फिल्मों की मैं बात करूँ तो रहना है तेरे दिल में, तन्नू वेड्स मन्नू, थ्री इडियट्स, रॉकेटरी, द नंबी फैक्ट, धुरंधर और ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने बेहतरीन रोल किया है, और इसके जरिए वो हर बार अपने अभिनय में एक नया रंग दिखाते हैं।
1: और बिल्कुल, और इसी रंग के चलते उन्हें रॉकेटरी फिल्म के लिए 2022 में नेशनल फिल्म अवार्ड और 2026 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया।
0: और आज ये बेहतरीन कलाकार अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो आइए आकाशवाणी और युवाणी और हम सभी श्रोताओं की ओर से आर माधवन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और आने वाले वर्षों में भी अपनी

0: ईमानदार अदाकारी से हमारा मनोरंजन करते रहें, मनोरंजन करते रहें। और फिलहाल प्रोग्राम युवाएं चल रहा है, युवा पसंद फरमाइश है, फरमाइशों का पिटारा खुला हुआ है। अगली फरमाइश।
1: बिल्कुल राहुल, जो अगली फरमाइश आई है, जो हमारे फरमाइश करता है वो लिखकर भेजते हैं कि प्रोग्राम पेश करता को प्यार भरा नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। और उन्होंने लिखा है, कलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र सांधु, अनीता सांधु, रोहित सांधु, रितेश सांधु, शिका सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मैक्स।
0: साथ ही साथ आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं ये उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल की तरफ से। साथ ही साथ धमदाग्राम सुखरी कलना से है अमित जंघेल, शंकु जंघेल, आरुषि, औशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल की तरफ
1: और
0: से।
1: वही साथ ही साथ तहसील सिंह धरी से नाग सिंह राजपुरोहित, तनवीर पुरोहित, गजेंद्र पुरोहित की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
0: मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता, करुण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई की तरफ से। साथ ही साथ बहुत सारी फरमाइश जो है, अगर आप भी हमारे साथ हमें और हमारे मेल एड्रेस पर फरमाइश भेजना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल भेज सकते हैं, युवा पसंद जोधपुर @gmail.com। और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9413329359। जी बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9413329359। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है हमें अपनी फरमाइश का कोई भी गीत लिखकर भेजिए और हम सुनाएंगे आपको आप ही के पसंद के गाने। इनकी फरमाइश का फिलहाल ही गाना सुन लेते हैं।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
2: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।

0: वेलकम बैक जी, एक बार फिर से शानदार बेहतरीन सी गजल के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम यौवन में यो पसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं।
1: जी हाँ, मैं हूँ आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नीतीश। और जो अगली फरमाइश करता है वो है अब्दुल हमीद, रईसा बानो, अब्दुल मुसवीर, आयशा बानो और अब्दुल अहद फीजा बानो। ये है जोधपुर से।
0: अगली फरमाइश आई है बिल्कुल पार्थ, रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से है। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और अगली फरमाइश जो है साथ ही साथ आई है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह की
1: और
0: तरफ
1: वही
0: से।
1: राहुल, साथ ही साथ गांव मैलाना तहसील बावड़ी जिला जोधपुर से छैला राम, रविंद्र, देवेंद्र, अनीता और फूली देवी।
0: साथ ही साथ ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से फरमाइश आई है श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से।
1: वही साथ ही साथ जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी।
0: सदर बराज कोरावाली से है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनल वर्मा और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से। आइए आप और मिलकर इनकी जो है फरमाइश का ये वाला बेहतरीन सा गाना एंजॉय करेंगे आप। बिल्कुल

0: जी बिल्कुल, देखते देखते आज की शाम, आज की ये महफिल अपना आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आपके भेजे हुए संदेश, प्यार भरे और आपकी फरमाइशों और गीतों के साथ गुजरा एक घंटा सचमुच याद कर रहा। दिल से शुक्रिया, और आपने अपनी शाम का हमें हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।
1: और चलते चलते कुछ पंक्तियां अर्ज है कि वक्त की रफ्तार में लम्हे गुजर जाते हैं, कुछ चेहरे और कुछ रिश्ते हैं वो दिल में उतर जाते हैं। मुलाकातें भले रोज ना हो हमारी, मगर कुछ लोग यादों में हमेशा ठहर जाते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है। और एक बात हमेशा याद रखना, दूरी चाहे कितनी भी हो, रिश्ते आवाज़ों से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ लोग सामने नहीं होते फिर भी दिल में बहुत करीब होते हैं।
1: इन्हीं भावनाओं के साथ अब मुझे

0: जी इजाजत, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त नीतीश और ले रहा हूँ आपसे विदा। अपना अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल को खुलकर जीते रहिए। मिलेंगे फिर कल इसी समय इसी स्टेशन पर, नई बातें नई गीतों और ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ। और कल यूथ अंताक्षरी, तो गानों की प्रैक्टिस कीजिए और आज की शाम मेरे साथ हैं।
1: इस आवाज का नाम राहुल और आज के कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति रही राजेश लामरोड। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया करें थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
2: Both sides underscored the importance.
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
4: I am confident that this comprehensive agreement.
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता

0: CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है.
1: Of our shared future.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है. नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया. बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की. सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है. पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं. एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई. पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया. राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई. नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा. शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं. इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है. उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है. अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया. उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था. हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं. इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है. एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. आइए, अब वक्त हो चला है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर का.

हाय गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, आज के सफर में आपकी रेडियो दोस्त पूजा जोशी आपके साथ है और आपके लिए लेकर आई है बेहद ही दमदार दिल को छूने वाले गीतों की प्लेलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, इन गीतों के बोल आपके दिल को न छू जाएं तो कहना ऐसे गीत जो आपके जहन में रचे बसे हैं, जिन्हें आप कितने ही बरसों से सुनते आ रहे हैं, गुनगुनाते आ रहे हैं। शाम का समय है और जब इन गीतों का साथ मिल जाए तो शामें और निखर जाती हैं। इवनिंग को गुड इवनिंग बनाने का गीतों से बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये शाम एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री के नाम है, तो लीजिए ना प्रोग्राम।

जी हाँ दोस्तों, इस गीत को सुनकर आप पहचान गए होंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम किस अभिनेत्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज यानी कि 1 जून को हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नरगिस का जन्म हुआ था। नरगिस ने 3 दशक से भी लंबे वक्त तक फिल्मी पर्दे और लोगों के दिलों पर राज किया। नरगिस ने अपनी एक्टिंग का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया था। हालांकि नरगिस कभी भी फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहती थी, तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर अभिनेत्री नरगिस के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें करते हैं और सुनते हैं उनके द्वारा फिल्माए गए प्यारे प्यारे गीत। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत चोरी चोरी फिल्म से।

नरगिस सच में ऐसी ही शख्सियत थी जो पंछी बनकर बहुत ऊपर तक उड़ी, जिसे सारा जहां देख रहा था, जिस ऊंचाई का हर कोई सपना देखता है। नरगिस उस आसमान में उड़ रही थी और अपना एक अलग मुकाम बनाया। दोस्तों, भारतीय सिनेमा की स्वर्ण युग की अभिनेत्रियों का नाम लिया जाए तो नरगिस का जिक्र होना लाजमी है। नरगिस का नाम लेते ही सबसे पहले मदर इंडिया वाली राधा का किरदार याद आ जाता है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि नरगिस अभिनेत्री कभी बनना ही नहीं चाहती थी। उनका सपना किसी और क्षेत्र में करियर बनाने का था। हालांकि माँ के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें अभिनय की दुनिया में कदम रखना पड़ा। हालांकि ये टर्निंग प्वाइंट उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ और आगे चलकर वे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चमकता हुआ सितारा बनी।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
3: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। पीएम स्वनिधि के 6 साल उत्साह सम्मान स्वाभिमान।

नरगिस का सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना था, लेकिन माँ की जिद के आगे उन्हें अभिनय की दुनिया में कदम रखना पड़ा और महबूब खान के पास बेमन से दिए गए स्क्रीन टेस्ट ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और उनकी माँ जद्दन बाई उस समय की प्रसिद्ध गायिका, नृत्यांगना, निर्देशक और अभिनेत्री थी। जद्दन बाई भारतीय सिनेमा जगत में खास स्थान रखती थी और अपनी बेटी को भी

साल 1935 में जब नरगिस सिर्फ 6 साल की थी तब उनकी मां ने उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्म तलाश हक में उतार दिया था। इस तरह उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई, लेकिन उनका दिल अभिनय में नहीं लगता था। एक दिन जदनबाई ने उन्हें महबूब खान के पास स्क्रीन टेस्ट देने भेज दिया था। नरगिस बिल्कुल बेमन से टेस्ट देने गई थी। उनका इरादा था कि महबूब खान उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और वो डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। महबूब खान उनकी अभिनय क्षमता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म 1943 में जो आई थी तकदीर, उसके लिए नरगिस को नायिका के रूप में चुन लिया। वो कहते हैं ना, किसी हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, और जो अभिनय क्षमता नरगिस के अंदर थी वे खुद उससे बेखबर थीं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, फिल्म तकदीर के बाद साल 1945 में हुमायूं आई, लेकिन असली सफलता नरगिस को 1949 में मिली राज कपूर की फिल्म बरसात और दिलीप कुमार के साथ अंदाज ने नरगिस को स्टार बना दिया। बरसात में राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। नरगिस का करियर तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा। तो आइए सुनते हैं बरसात फिल्म का ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, साल 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया आई, जिसने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। इस फिल्म में राधा के किरदार में नरगिस ने इतना दमदार अभिनय किया कि फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन मिला। मदर इंडिया फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शुमार है। जी हाँ दोस्तों,

आज 28 साल की उम्र में उन्होंने सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया था। हर कोई उनका प्रशंसक बन गया था, उनका दीवाना बन गया था। उनके अभिनय की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में उनकी गिनती होती है, ये इसीलिए होती है क्योंकि उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। तो आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

अगर हिट जोड़ी की बात करें तो वहीं राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी सबसे ज्यादा यादगार जोड़ियों में से एक थी। आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो जैसी फिल्मों में दोनों ने बखूबी साथ काम किया। इन फिल्मों के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और दोनों की जो जोड़ी थी वो लोगों को बड़ी पसंद आती थी और कितने ही सालों तक दोनों ने साथ में कितनी ही फिल्में की। तो आइए सुनते हैं एक गीत श्री 420 फिल्म से।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
3: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में

लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।

जी हाँ दोस्तों, नरगिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्रियों में गिनी जाती है और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी हिट रही शोमैन राज कपूर के साथ। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि इसका असर पर्दे के पीछे भी नजर आने लगा। फिल्मों के साथ साथ नरगिस और राज कपूर निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा बटोरने लगे। फिर क्या था, राज कपूर और नरगिस की जोड़ी पर्दे पर हिट होती चली गई। आरके स्टूडियो की हिट फिल्मों की लिस्ट में नरगिस की कई यादगार फिल्में शामिल हैं।

0: दोस्तों, मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया था। 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से विवाह कर लिया और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त एक मशहूर फिल्म अभिनेता थे। उनके 3 बच्चे हुए, संजय, अंजू और प्रिया। वर्तमान में संजय दत्त फिल्म कलाकार हैं तथा प्रिया दत्त राजनीति से जुड़ी हुई हैं।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

दोस्तों, 60 के दशक में यदा कदा वे फिर से फिल्मों में नजर आई। इस काल की कुछ फिल्मों में एक थी दिन और रात, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है रात और दिन, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में उन्हें कैंसर घोषित हुआ और वे हमारे बीच नहीं रही। हालांकि वे इतनी उम्दा कलाकार हैं जो आज भी हमारे जहन में जिंदा है, हमारे दिलों में आज भी वे राज करती हैं। और तो और, उनका डॉक्टर बनने का सपना भी एक तरीके से उन्होंने पूरा किया है। जी हाँ दोस्तों, नरगिस एक अभिनेत्री से ज्यादा एक समाज सेविका रही हैं। उन्होंने नेत्रहीन और विशेष बच्चों के लिए काम किया था। वे भारत की पहली स्पास्टिक सोसाइटी की पैट्रन बनी थी। उन्होंने अजंता कला सांस्कृतिक दल बनाया, जिसमें तब के नामी कलाकार गायक सरहदों पर जाकर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे, उनका मनोरंजन करते थे। तो नरगिस एक ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिसे पद्मश्री भी दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वालों में भी वे प्रथम अभिनेत्री थी। और तो और, मुंबई में बांद्रा में उनके नाम पर सड़क भी है। जी हाँ दोस्तों, हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता है। तो आज है उनका जन्मदिन। वे हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में है। उन्हें शत शत नमन।

तो दोस्तों, आज हमने बातें की और गीत सुने नरगिस दत्त के बारे में। इसी के साथ अभी इस घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और अलविदा का समय हो चुका है। तो अपनी रेडियो दोस्त, अपनी होस्ट पूजा जोशी को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर से

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने वाले हैं, आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज की ओर, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।
1: की सुरीली धड़कन, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला।

जयमाला कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ जिसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने। फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान।

अगम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सेना।
1: भारतीय सेना गीत ये अभी आपने सुना और आइए अब जयमाला कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सिलसिला फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना जावेद अख्तर की और धुन बनाई है शिवहरी ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं शान फिल्म का गीत आवाज मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अनजान का लिखा ये गीत जिसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम महान।

गुलशन बाबरा का रचा ये गीत सुनिए, कल्याण जी आनंद जी की धुन है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर, फिल्म का नाम हाथ की सफाई।

जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कर्ज फिल्म का ये गीत। स्वर है किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

Come on, Echo!

0: स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी से जुड़ी बेहद दिलचस्प स्मृतियां साझा करेंगी आकाशवाणी परिवार की सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनीता वैसली पटेल। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अनीता जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है वापस अपने घर में आके।
0: क्या बात है,
1: सब अपने ऐसा लग रहा है अपने अपनी दीवारें, एक अपनापन, क्योंकि इन स्टूडियोज में हम काम करते थे, हम कलाकारों को बुलाते थे, रिकॉर्ड करते थे, और आज हम उसी रोल में बैठे हैं। हमेशा तो माइक के पीछे ही काम करने में आनंद आता था, अच्छे से अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाना, और उनसे हमारे जो अनाउंसर्स होते हैं बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, किस तरह से बात निकलवानी है ये वो जानते हैं।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: तो उनको वो काम करने दिया जाता था और हम अपना ढूंढने में लगे रहते थे, बस खोजी दस्ता।
0: तो आज हम जो आपने कहा ना कि उद्घोषक बात निकलवाना जानते हैं, तो आज हम भी आपसे बहुत सारी बातें निकलवाएंगे।
1: अच्छा, अच्छा,
0: और आपकी बहुत सारी यादों को हम खंगालेंगे और आपको बहुत सारी यादें साझा करनी होंगी। तो चलिए फिर यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि विविध भारती के स्टूडियो में अनीता जी के सानिध्य में हमें भी काम करने का मौका मिला और सेहतनामा कार्यक्रम, आज के मेहमान जैसे कार्यक्रम को उन्होंने रिकॉर्ड किया और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग इन्होंने की जिसमें आर्टिस्ट को आमंत्रित करती थी और हम सब इंटरव्यूज किया करते थे। लेकिन अनीता जी, हम मुंबई की बातें बाद में करेंगे, पहले हम आपको उत्तर प्रदेश की गलियों में ले चलते हैं, रामपुर आकाशवाणी, जहां आपका सिलेक्शन हुआ था। कीजिए
1: तो पहली पोस्टिंग रामपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो यूपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था
0: जी,
1: आया लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, और रामपुर का नाम पढ़ते ही सब लोग थोड़े से ये कहने लगे कि नहीं जाने दूंगा मेरे पिताजी, क्योंकि वहां तो सब चाकूबाजी और ये सब का सुनते, खबरें सुनते थे ना कि लड़की को कैसे जाने दे, अनमैरिड लड़की को उठा के अकेले वहां रहने के लिए। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, जिद करी मैंने। उसके लिए मैंने अपनी सहेली से पैसे भी ले आई।
0: अच्छा।
1: हाँ, कि जाना है तो नहीं। फिर मेरे पिताजी मुझे लेके गए अच्छी तरह से। हाँ, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड का घर भी था वहां, तो गए वहां, ज्वाइन किया। फिर स्टेशन में गए तो इतना प्यार मिला, क्योंकि छोटे से एकदम कॉलेज से निकल के हम वहां गए थे, और म्यूजिक की हूँ मैं तो म्यूजिशियंस तो इतना प्यार देते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह
0: जी।
1: हमारे तो इतना अच्छा माहौल मुझे मिला रामपुर में, बिल्कुल फैमिली की तरह। तीन विंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग एंड प्रोग्राम
0: जी।
1: तो वहां कुछ पता ही नहीं चलता था, जब गर्मी का मौसम है या अमरूदों का मौसम है तो बाहर से ठेला जा रहा है तो

0: बुला लिया, सब बैठ के अमरूद भी खाते थे, मूंगफलियां, हम कॉलोनी में घुसते थे तो सब कुर्सियां डाल के बैठे हैं, मूंगफलियां लेके सब बैठे हैं खा रहे हैं। अपना घर पहुंचते पहुंचते आधा पौना घंटा लग जाता था, तो बड़ा अच्छा माहौल हमने देखा। रामपुर की गंगा जमनी तहजीब देखी, कहीं कुछ डर नहीं लगा, और सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे, सब जानते थे एक दूसरे को। तो एक बार बाजार में सामान लेने गए तो बोल रहा है, हाँ हाँ आप बस ऑर्डर दे दीजिए, घर पहुंच जाएगा। मैंने कहा मैंने तो आपको बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। कहते हैं हम सब जानते हैं, रामपुर में सबको सबका पता है। तो इतना अच्छा, और वहाँ इतनी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, खूब साड़ियाँ, मैंने सब रिश्तेदारों को पैच वर्क की साड़ियाँ पहनाई, सब खुश मुझसे।
1: पहली तनख्वाह मिली थी उससे?
0: हाँ।
1: फिर माँ के हाथ में क्या रखा था?
0: माँ के हाथ में तो साड़ी रखी थी कि भाई ये लो मेरी पैच वर्क की साड़ी।
1: बड़ा जज्बाती लम्हा रहा होगा।
0: हाँ, अरे और मेरे पिताजी तो इतना मुझे केयर करते थे, और वो रामपुर से हमेशा पास होते थे, दिल्ली से उनका लखनऊ हेडक्वार्टर था, तो आते जाते मेरे लिए कभी बालूशाही कभी कुछ।
1: अच्छा अनीता जी, आपने अभी जिक्र किया संगीत से आप आकाशवाणी में आपका प्रवेश हुआ, तो वो संगीत के बारे में बताइए, क्या शास्त्रीय संगीत आपने सीखा है और क्या क्या तालीम ली अपनी डिग्री के बारे में?
0: तो मेरी डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो है वो संगीत ने ही दी है मुझे। यहाँ तक कि मैं पहले 10th पास करी, जब तो स्ट्रीम चुनते हैं तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उन्होंने बोला कि तुमने साइंस क्यों नहीं ली? मैंने बोला उसमें संगीत नहीं है।
1: ओहो, क्या बात है।
0: इसलिए मैंने वो साइंस नहीं ली, बाकी मैं बहुत काबिल थी तो बन सकती थी। और उसके बाद बीए म्यूजिक किया मैंने
1: जी,
0: और अपनी लाइफ को जो मैं डेडिकेट करती हूँ ना, जो सही रास्ते पे लाया वो मेरे गुरुजी, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ, पंडित तेजपाल सिंह, सिंह बंधु वाले
1: जी,
0: उनसे मैंने गाना सीखा, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने एमफिल म्यूजिक किया,
1: क्या बात है,
0: और जबलपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया, और प्रयागराज यूनिवर्सिटी से कथक में डिप्लोमा किया। ये सब क्योंकि हमारे पिताजी बड़े हमें गाइड करते थे, तो गाने में तो खाना और गाना साथ चलता है, और खूब खाती थी मैं मोटी तगड़ी थी बिल्कुल, फूली कभी नहीं हूं मैं। हाँ। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, मगर बॉडी बिल्डर वाला स्ट्रक्चर था मेरा, तो बहुत ही अच्छे से रहती थी। तो रामपुर में भी कई बार लोग कहते थे कि मैडम आपसे हमें बहुत डर लगता है। क्योंकि वहां की लड़कियां बिल्कुल पर्दा नशीन और एयर वो, हम यहाँ धाकड़ अपने चले जा रहे हैं, पर्सनैलिटी हमारी, तो बहुत इंजॉय किया रामपुर का। रामपुर में जब हिंदुओं के त्योहार आते थे तो झूले पड़े हुए हैं, कॉलोनी में भी झूले डलते थे, हमने वो इंजॉय किया जो हमें दिल्ली में नहीं मिल पाता था, क्योंकि दिल्ली शहर है। और उसी तरह से होली आई तो हर एक के घर के आगे एक बड़ी सी टेबल में पकवान रखे रहते थे, और सब सामूहिक रूप से कॉलोनी में होली खेलते थे।
1: क्या बात है।
0: अरे बहुत ही, मतलब असली में त्योहारों का जो मजा है ना, वो इन छोटी जगहों में जाके ही जो आपको प्यार मिलता है ना, ईद हो सब जाते थे, मुबारकबाद, दिवाली में
1: क्रिसमस
0: क्या सजाया सजावट होती थी, क्रिसमस पे हमारे दयाल साहब थे, सब उनके घर पहुंच जाते थे।
1: दयाल साहब आकाशवाणी
0: में अनाउंसर थे सीनियर।
1: अच्छा, जी।
0: तो हमारे किसी के भी घर में कुछ बढ़िया बनता था ना, तो मैं तो मासूम बेचारी अकेली रहती हूँ ना।
1: अभी तो आप बता रही थी कि आपको देख के लोग डरते थे, अभी कह रही मासूम। तो
0: क्योंकि मुझे जो बड़े बड़े जो मेरे हमारे जो ऑफिसर्स थे ना,
1: मासूमियत होती है
0: वो नहीं, वो बुलाते थे बच्चे की तरह कि भाई जाओ उसको बुला लो, वो खा लेगी, अभी बन रहे हैं दही बड़े या छोले भटूरे का ही बन रहे हैं। तो जिस भी घर में कुछ अच्छा बनता था, तो पहले अनीता वैसली थी तब मैं, तो मुझे बुला लिया जाता था। तो मेरी तो मतलब क्या जिंदगी थी, वो नौकरी एक तो संगीत की नौकरी थी, शेड्यूलिंग करती थी, शेड्यूलिंग करती थी, तो लोग बड़े खुश होते थे, सुनते थे। क्या है, बड़े बड़े इन जगहों में पान की दुकानों में जोर जोर से बजाते हैं गाने, तो हमारे शेड्यूल हुई हुई गजलें या सबरंग जब बजरा होता था वहां, हमसे हम निकलते थे तो हमें भी बड़ी खुशी होती थी, और लोगों को भी कोई नया आके शेड्यूलिंग कर रहा है, क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी में ही बैठी रहती थी, मुझे इतना शौक था कि अच्छे से अच्छा करूं, तो लोग कॉम्प्लीमेंट करने आते थे, पुराने पुराने जो सुनने वाले अप्रिशिएट करते थे कि वाह ये वाले गजलें हमने पहले के कब से सुनी नहीं थी, तो एक मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था।
1: अब जब बात गानों की चल जाए और एक इतनी बड़ी गायिका हमारे सामने बैठी हो, तो उनसे हम गवाए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अनीता जी कुछ लाइन गुनगुना के सुनाइए, उन दिनों की याद करते हुए या आज कुछ गुनगुनाती हैं।
0: वैसे तो यूपीएससी के लिए जो इंटरव्यू दिया था

0: वहां पर भी हमें गा के बताना पड़ा था। ये उनके लिए भी एक अच्छा तरीका था टेस्ट करने का कि जिसको हम संगीत की जिम्मेदारी
1: के लिए हम नियुक्त कर रहे हैं
0: वो किसी काबिल है कि नहीं।
1: हाँ, तो ठीक है वही सुना दीजिए जो आपने।
0: हालांकि मेरे अब 34-35 साल से तो मैं काम में ही लगी रही हूँ
1: जी,
0: फिर भी थोड़ी कोशिश करती हूँ।
1: जी जी सुनाइए।

0: करा।
1: क्या बात है भाई, आपने 34 साल पहले ये बंदिश गाई थी और आज इतने सुर में, क्या बात है।
0: तो ये
1: बहुत बढ़िया बंदिश आपने सुनाई और कहीं भी सुर बिल्कुल सधा हुआ है। आपने तो कहा 34 साल पहले गाती
0: हाँ,
1: थी
0: चौतीस
1: और
0: पैंतीस
1: काम में
0: साल
1: बिजी हो गए।
0: पहले
1: हमें तो
0: अब तो
1: लगता है
0: गला
1: कि
0: चेंज हो गया है बिल्कुल।
1: आप इस हुनर को अभी और आगे बढ़ाएं। हमारी तो शुभकामनाएं हैं आपके लिए और हम तो आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप इसे आगे बढ़ाइए फिर से। और अभी आपके पास वक्त भी है रियाज का,
0: हाँ, ये तो
1: तो
0: बहुत अच्छा सजेशन है,
1: और
0: सोचती हूँ मैं, क्योंकि अब फ्री हो गई हूँ।
1: जी, क्योंकि जब आकाशवाणी में जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जहां आपके निजी शौक पड़े रह जाते हैं जिन पर हम गौर नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए वक्त है और आप तो फिर से शुरू कीजिए। विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अनीता जी, अब हम आपके आकाशवाणी के सफर पर चलते हैं। आकाशवाणी रामपुर से फिर आप किस आकाशवाणी केंद्र पर गई? 5 आकाशवाणी केंद्रों पर आपने काम किया।
0: हाँ, वो भी अलग अलग स्टेट्स में।
1: जी, तो रामपुर से कहाँ गई पहले?
0: रामपुर से मैं दिल्ली गई। हालांकि रामपुर बहुत प्यारा था, मगर दिल्ली अपना घर था,
1: जी,
0: पेरेंट्स थे, तो
1: ट्रांसफर
0: वहीं
1: हुआ
0: जाना
1: आपका।
0: था, तो वहां के लिए ट्रांसफर हो गया। दिल्ली में मैंने दिल्ली स्टेशन पे काम किया, संगीत देखा, उसके बाद फिर
1: संगीत विभाग में आप?
0: संगीत विभाग में मैंने देखा नेशनल प्रोग्राम्स एंड
1: अच्छा,
0: संडे नाइट कॉन्सर्ट्स। उसके लिए जो भी आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स आती हैं, उसको बजवाना, वो हमारी जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर मैं वहीं पे इंटरनल ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो वहां गई मैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट, जिसे DTPES कहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें पूरे देश भर में इधर से उधर प्रोग्राम्स का एक्सचेंज किया जाता है सैटेलाइट के थ्रू। रोज सैटेलाइट फीड जाता है, तो
1: संगीत के
0: उस
1: कार्यक्रम
0: नहीं सभी तरह के
1: सभी तरह के
0: कार्यक्रम,
1: कार्यक्रम जी।
0: तो DTPS में वो काम होता है, और सैटेलाइट के लिए शेड्यूल करके दिया जाता है, और बाय पोस्ट भी भेजा जाता है, और उसके अंदर फॉरेन के जो प्रोग्राम होते हैं, डॉशे वेले जर्मनी से जो आते थे,
1: जी
0: और वॉइस ऑफ अमेरिका, तो इन सब के प्रोग्राम्स को हमारे DTPS में एक बड़ी फैसिलिटी थी हाई स्पीड डबिंग की। तो वहां पे उनके बहुत सारी कॉपियां तैयार की जाती थी और उनको डिस्पैच कराया जाता था।
1: जी, ये विविध भारती में भी हुआ करता था। जब विविध भारती में जब टेप का जमाना था तो
0: हाँ
1: उस समय यहाँ से सारे
0: हाँ
1: प्रोग्राम रिकॉर्ड
0: टेप
1: करके
0: के जमाने में बहुत काम होता था, है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: इवन कमर्शियल्स को भी डबिंग कर करके सब जगह भेजे जाते
1: भेजा
0: थे।
1: जाता था।
0: और फिर उसके बाद एक जिम्मेदारी मेरे पर आई PM एंड प्रेसिडेंट ब्रॉडकास्ट की,
1: अच्छा,
0: तो उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट से और PMO से हमें राबता रखना पड़ता था, और जहां भी प्रेसिडेंट स्पीच देते थे और PM स्पीच देते थे, वो हम प्रोक्योर करके
1: जी
0: उसकी कॉपीज बनाते थे, उसको PMO को भेजते थे और प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट को भेजते थे, जहां जैसी है, और उनको फिर हम ट्रांसक्राइब कराया करते थे, उनकी स्पीच को लिखवाना, ट्रांसक्राइब करते थे, सुन के टाइप करते थे, उसकी कॉपीज बन के उनको हम लोग वॉल्यूम्स हमने बनाए।
1: अच्छा,
0: जी हाँ, दिल्ली
1: जी
0: में
1: जी
0: वो आर्काइव्स में वो रखे हुए हैं वॉल्यूम्स,
1: जी
0: तो वो बहुत बड़ा काम हमने किया।
1: वो तो
0: और
1: आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी विरासत होगी, वो धरोहर होगी कि आकाशवाणी दिल्ली में जब एक नई पीढ़ी तैयार होगी तो वो प्रोग्राम्स देखेगी और
0: हाँ,
1: जानेगी कि क्या
0: स्पीचेस
1: हुआ
0: सुनते
1: करता
0: थे,
1: था।
0: और कभी कभी किसी किसी स्पीच में इतनी तकलीफ हो जाती थी, क्योंकि वो उनका जो बोलने का प्रोनंसिएशन होता था ना, कई बार भाई बुजुर्ग होते हैं हम, इन
1: जी
0: पोस्ट
1: जी
0: पे पहुंचते पहुंचते, और
1: जी
0: या फिर संस्कृत के कुछ बोल दिए, तो वो समझना मतलब वो भी बड़ी मुश्किल से, और गलत नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी।

0: उसमें इधर से उधर एक मात्रा भी,
1: बिल्कुल, क्योंकि
0: तो वो बड़ा
1: आकाशवाणी तो
0: चैलेंजिंग होता था
1: भाषा
0: काम।
1: के रूप में, भाषा का पैमाना माना जाता है ना, मानक भाषा
0: नहीं,
1: प्रस्तुत करता
0: पीएम
1: है
0: प्रेसिडेंट
1: जी।
0: की वो है
1: हाँ
0: तो उसको तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहा, क्योंकि वो हमें अभी तक करना ही पड़ा, अब तक भी करते हैं हम।
1: जी
0: मन की
1: जी
0: बात की
1: जी जी
0: वो करते थे, 100वें एपिसोड तक हमने किया।
1: प्रधानमंत्री जी की मन की
0: जी
1: बात
0: हाँ जी हाँ, हमने वो उनको किया पूरा बॉम्बे
1: जी,
0: स्टेशन में।
1: क्या बात है।
2: स्मृतियों के स्वर आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आकाशवाणी परिवार की सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनीता वेस्ली पटेल से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: स्मृतियों के स्वर।

0: श्री वी एम आनंद का लिखा प्रहसन सुनिए, इंटरव्यू।
1: जी हुजूर।
2: लोग इंटरव्यू के लिए आ गए?
1: जी हुजूर, बाहर उम्मीदवारों की लाइन लग रही, वो सब इसी इंतजार में है कि आप उन्हें बुलाएं और वो इंटरव्यू हो।
2: कुल कितने उम्मीदवार होंगे?
1: जी मेरा ख्याल है होंगे 40-50।
2: और उनमें उम्मीदवारनियां कितनी हैं?
1: उम्मीदवारनियां
2: मेरा मतलब है उनमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां?
1: लड़कियां जी, लड़की तो सिर्फ एक ही है, देखता हूँ।
2: हाँ
1: हाँ, वो तीसरे नंबर पर बैठी।
2: तीसरे नंबर पर? तो ठीक है, चलाओ इंटरव्यू।
1: चलाओ इंटरव्यू?
2: चलाओ नहीं बल्कि दौड़ाओ, मेरा मतलब है कि जल्दी जल्दी करो, एक दो उम्मीदवार को जल्दी बुलाओ।
1: बहुत अच्छा सरकार। उम्मीदवार नंबर एक, चलिए।
3: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आप जानते हैं कि ये इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है?
3: यस सर, स्टेनोग्राफर के लिए। मेरी टाइप की स्पीड 60 है सर, और शॉर्ट हैंड की स्पीड 150।
2: बस 150?
3: सर वैसे तो 170 तक भी हो जाती है।
2: मुझे अफसोस है कि हमें आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है।
3: जी
2: मेरा मतलब है कि हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड की कोई लिमिट ना हो, बल्कि शॉर्ट हैंड उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो।
3: तो फिर मैं वही कैंडिडेट हूँ सर जिसकी आपको तलाश है।
2: वो कैसे?
3: शॉर्ट हैंड मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि मैं खुद शॉर्ट हैंड का एक मुजस्मा हूँ। जितने उम्मीदवार इस वक्त इंटरव्यू के लिए आए हैं ना, उन सब में शॉर्ट हैंड साइज मेरा ही है, यानी कि मेरा कद सिर्फ 3.5 फीट है।
2: ओ समझा।
3: और मेरा जन्म भी तो शॉर्ट हैंड में हुआ था।
2: जी जन्म शॉर्ट हैंड में?
3: यस सर।
2: अब समझा। तो
3: वैसे मेरा तो लव अफेयर भी शॉर्ट हैंड में हुआ था।
2: लव अफेयर भी शॉर्ट हैंड में हुआ?
3: यस सर। और लड़के लड़कियां तो कई कई साल तक छिप छिप कर मिलते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जाकर छोले और कुलचे खाते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें मोहब्बत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार, फिर लड़के के रिश्तेदार या लड़की की माँ, मामी, चाची या फूफा वगैरह उनकी मोहब्बत में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगूं सरकार, तो सुबह से शाम हो जाए, और लिखने लगूं तो कम से कम 20 फुल स्केप सफे भर जाए और दास्तानें फिर भी खत्म ना हो। लेकिन अपने केस में तो वही शॉर्ट हैंड वाला मामला। मैं एक दिन बस स्टॉप पर बस के इंतजार में लाइन में खड़ा था, मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, ना मैंने उसे कभी वैसे देखा और ना कभी उसने मुझे

0: देखा लाइन में खड़े खड़े मुझे खांसी आ गई और फिर उस लड़की को भी खांसी आ गई। बस मोहब्बत हो गई।
1: बस इतनी सी बात पर मोहब्बत हो गई?
0: मोहब्बत ही नहीं सर, बल्कि शादी भी हो गई।
1: शादी भी हो गई?
0: और वो शादी भी शॉर्ट हैंड में सर, यानी कि ना कोई ठाका ना कोई सगाई, बस यूं समझिए सरकार चट खांसी और पट पिया। और शादी के बाद बच्चे भी हुए तो वो भी शॉर्ट हैंड में।
1: बच्चे भी शॉर्ट हैंड में?
0: यस सर, 6 साल में 12 बच्चे।
1: ओह माय गॉडनेस, 6 साल में 12 बच्चे, वो कैसे?
0: ये शॉर्ट हैंड तो बिल्कुल सिंपल है सर, यानी कि एक एक साल में एक एक जोड़ा। अब तो आपको यकीन आ ही चुका होगा सरकार कि जो काम बाकी के उम्मीदवार 1 घंटे में करेंगे, मैं वही काम सिर्फ 5 मिनट में कर सकता हूँ।
1: मेरा ख्याल है कि अगर मैंने आपको इस दफ्तर में मुलाजिम रख भी लिया तो अगर इस कंपनी का दिवाला 1 साल में निकलना होगा तो आपकी वजह से 1 महीने में निकल जाएगा शॉर्ट हैंड में।
0: जी
1: जी हाँ, अब आप जा सकते हैं, मुझे आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है। अब आप शॉर्ट हैंड में, यानी कि फटाफट इस कमरे से तशरीफ ले जाएं तो बेहतर है।
0: ऑलराइट सर।
1: राधेलाल
2: आया हुजूर।
1: दूसरे उम्मीदवार को बुलाओ।
2: जो हुकुम सरकार। उम्मीदवार नंबर 2, चलिए इंटरव्यू के लिए।
3: मैं एक कमेंट सर।
1: आइए बैठिए। शुक्रिया। आप जानते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं?
3: ये सर, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। मेरी टाइप और शॉर्ट हैंड की स्पीड।
1: अजी गोली मारिए टाइप और शॉर्ट हैंड की स्पीड को।
3: हाँ जी,
1: मेरा मतलब है कि हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है जिसकी लियाकत सिर्फ टाइप और शॉर्ट हैंड तक ही महदूद हो। हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो हाजिर जवाब हो, दिलचस्प हो। अच्छा ये बताइए, आप कितने भाई हैं?
3: हम थे तो 5 भाई, लेकिन अब सिर्फ 4 रह गए।
1: ओ, आपके 5वें भाई को क्या हुआ?
3: जी क्या मतलब सरकार, उसने खुदकुशी कर ली।
1: ओह बहुत अफसोस की बात है। खुदकुशी कैसे कर ली? मेरा मतलब है कि वो गाड़ी के नीचे आके मर गया, या दरिया में छलांग लगाकर, या जहर खाकर, या छत से कूदकर?
3: जी जी नहीं, उस बेचारे ने शादी कर ली।
1: ओ शादी कर ली। खैर जाने दीजिए। ये बताइए कि अगर आपके घर और दफ्तर के दरमियान 2 गलियां, 3 बाजार, 4 सड़कें, 5 चौराहे और 6 मोड़ हों तो बताइए कि आपका घर उस दफ्तर से कितनी दूर है?
3: सरकार मेरा घर दफ्तर से कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं दफ्तर हर रोज ऐन वक्त पर आया करूंगा।
1: जी आप पहले भी किसी दफ्तर में काम कर चुके हैं?
3: अब आप एक दफ्तर की बात करते हैं जनाब, अगरचे मेरा कुल तजुर्बा 6 साल का है, लेकिन मैंने कम से कम 1 दर्जन दफ्तरों में काम किया होगा, यानी कि हर दफ्तर में 6-6 महीने।
1: सिर्फ 6-6 महीने?
3: जी।
1: इसका मतलब है कि आपका काम किसी को पसंद नहीं आया?
3: ऐसा नहीं जनाब, बल्कि मेरा काम हर अफसर ने पसंद किया, हर अफसर को मुझसे मोहब्बत हो गई,
1: और वो मोहब्बत फिर जल्दी जल्दी टूटती
3: है। जी हाँ जी हाँ, आपने वो शेर तो सुनी रखा होगा कि जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। एक दफ्तर में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरी तनख्वाह 100 रुपए मुकर्रर की गई, मेरे काम से खुश होकर मेरी तनख्वाह 2 महीने 150 रुपए कर दी गई,
1: यानी कि 1 ही महीने के बाद आपकी तनख्वाह 1.5 कर दी गई।
3: जी जी जी जी, सिर्फ इतना ही नहीं सर, 3rd महीने 200 रुपए, 4th महीने 250 रुपए, और 5वें महीने 300 रुपए, और 6th महीने 350 रुपए।
1: शाबाश, इतनी तरक्की कर ली आपने और फिर भी वो नौकरी छोड़ दी, क्यों?
3: क्या करता जनाब, नौकरी तो छोड़नी थी, गुजारा जो नहीं होता।
1: ओ गुजारा जो नहीं होता।
3: जी जी जी, क्योंकि तनख्वाह तो मुझे 1 बार भी नहीं मिली।
1: समझ में आया। देखिए
3: जी,
1: आप इस दफ्तर में मान लीजिए काम कर रहे हैं, और बाहर से एक लड़की सीटी बजाती है, तो आप क्या करेंगे?
3: उसकी पहली सीटी पर तो मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि मैं समझूंगा कि शायद वो सीटी आपको बजा रही है। उसकी दूसरी सीटी पर मैं सीटी का जवाब सीटी से दूंगा।
1: और अगर उसने इशारा करके आपको दफ्तर से बाहर बुलाया तो?
3: तो मैं उल्टा उसे इशारा करके दफ्तर के अंदर बुला लूंगा।
1: लेकिन आप ये जानते हैं कि उसके दफ्तर के अंदर आने से आप काम नहीं कर पाएंगे।
3: और अगर वो बाहर खड़ी रही तो मैं भी कैसे काम कर पाऊंगा? अब आप ही बताइए ना जनाब, अगर कोई लड़की आपके कमरे के बाहर खड़ी इस इंतजार में हो कि आप उसे बुलाएं, तो भला आप कोई काम कर पाएंगे?
1: आप जा सकते हैं।
3: अच्छा वो अभी तो मेरी इंटरव्यू खत्म नहीं हुई ना, अभी तो आप मेरे हाजिर जवाब और दिलचस्प होने का इम्तिहान ले रहे थे, इस पोस्ट के बारे में तो आपने एक भी सवाल नहीं पूछा।
1: जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया, अब आप जा सकते हैं। राधेलाल
2: आया सरकार।
1: बुलाओ तीसरे उम्मीदवार को, जल्दी बुलाओ।
2: जो हुकुम, तीसरे उम्मीदवार आ जाए इंटरव्यू के लिए।
4: मे आई कम इन सर?
1: यस यस कम इन। हाउ स्वीट।
4: How sweet?
1: मेरा मतलब है have the seat। आपका नाम?
4: मेरा नाम है मिस जलेबी वाला।
1: मिस जलेबी वाला, आप टाइप तो जानती ही होंगी।
4: टाइप? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
1: और शॉर्टहैंड भी आती ही।

0: होगी आपको।
1: शॉर्ट हेयर, व्हाई नॉट? शॉर्ट का मतलब है छोटा और हैंड का मतलब है हाथ।
0: है ना? वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: ये देखिए मेरे दोनों हाथ कितने छोटे छोटे हैं।
0: हाउ लवली, चले भी वाला।
1: यस सर।
0: आपकी शादी हो चुकी है?
1: नहीं तो।
0: वेरी गुड, तो ठीक है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि यू आर हियर बाय इलेक्टेड। मेरा मतलब है सिलेक्टेड, यानी कि ये नौकरी आपको दे दी गई और आपको नौकरी पर रख लिया गया।
1: थैंक यू माय बॉस।
0: राधेलाल
2: आया सर का।
0: बाकी के सब उम्मीदवारों से कह दो कि हमने सिलेक्शन कर लिया है, वो अब सब जा सकते हैं।
2: बहुत अच्छा सर का।
0: चलिए दीवाना।
1: यस माय बॉस।
3: जनाब मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, इंटरव्यू के लिए आया था।
0: मैंने आपको दो बार कहलवाया है कि आप जा सकते हैं, सिलेक्शन हो चुके।
3: लेकिन बिना इंटरव्यू मुकम्मल हुए सिलेक्शन हो गई। आप मेरे टाइप का टेस्ट ले लीजिए, शॉर्ट हैंड का टेस्ट ले लीजिए।
0: टाइप, शॉर्ट हैंड? भाई मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं और साथ में मेरा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं?
3: जी फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप मेरी इंटरव्यू लेकर देख तो लीजिए। मैं बहुत दूर से हाजिर हुआ हूँ इतना खर्च करके।
0: अच्छी बात है, ये बात है तो फिर तैयार हो जाइए।
3: मैं तैयार हूँ जनाब।
0: आप बतला सकते हैं कि खजूर के पेड़ ऊंचे और अंगूर के पेड़ नीचे क्यों होते हैं?
3: जी जी नहीं।
0: आप जानते हैं कि लीमू खट्टे क्यों होते हैं और मिर्ची कड़वी क्यों होती है?
3: जी जी नहीं।
0: अगर गोभी का भाव 8 आने किलो हो तो गोभी के एक फूल के कितने पैसे होंगे?
3: ये भी नहीं बतला सकता।
0: ये खूबसूरत सूट जो आपने पहन रखा है उसके बनाने में कितने पाउंड और कितने औंस ऊन खर्च हुई होगी?
3: जी ये भी मैं नहीं बतला सकूंगा।
0: ये भी नहीं बतला सकूंगा, वो भी नहीं बतला सकता। अगर आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बतला सकते तो आप इंटरव्यू देने आए क्यों हैं? मैंने कहा था ना आपसे कि आप मेरा वक्त जाया मत कीजिए।
3: लेकिन मैं अर्ज करूं कि इन सवालात का इस नौकरी से क्या ताल्लुक?
0: ताल्लुक है, हर सवाल का नौकरी से ताल्लुक है। अब आप जा सकते हैं।
3: जी
0: जी हाँ, अब आप जा सकते हैं।
3: जी अगर इस तरह के बेतुके सवालात आपसे पूछे जाएं तो क्या आप जवाब दे पाएंगे?
0: क्यों नहीं, वरना मैं मैनेजर की कुर्सी पर कैसे पहुंचता?
3: जी क्या आप बतला सकते हैं कि आपके मूछे मुंह पर क्यों, गर्दन पर क्यों नहीं?
0: मूछे? ये कोई सवाल है भला?
3: अगर एक नाई कैंची से आपके सर के सारे बाल आधे घंटे में काट सकता है तो 4 नाई मिलकर उस्तरों से आपके सर के बालों को कितनी देर में सफा चट कर सकते हैं?
0: कमाल है। आप इंटरव्यू देने आए हैं या इंटरव्यू लेने?
3: जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ऐसी 562 कुर्सियों का कितना वजन होगा?
0: लेकिन मिस्टर मैं कहता हूं कि आप यहां से।
3: लेकिन जो मेज आपके आगे पड़ी है उतनी 50 मेजें बनाने के लिए कितने दरख्त काटने पड़ेंगे? जी कितने मिस्त्री लगाने पड़ेंगे, कितनी कीलें खर्च होंगी?
0: ओहो हद हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि उम्मीदवार होकर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं?
3: जी हाँ, शायद आप भी बेतुके सवालात से घबरा गए हैं। अब आपसे मैं काम के सवालात पूछूंगा। क्या आप बतला सकते हैं कि जब से आप इस ब्रांच के मैनेजर बने हैं इस ब्रांच को कितना नफा या नुकसान हुआ?
0: कमाल है, आप उम्मीदवार हैं या इस कंपनी के ऑडिट ऑफिसर?
3: जी क्या आप बतला सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कितनी पेंडिंग चिट्ठियां हैं जिनका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है?
0: जी
3: क्या आप बतला सकते हैं कि आपके पास हर महीने हेड ऑफिस से कितने रिमाइंडर्स आते हैं, फुला स्टेटमेंट आया, फुला भेजा है कि नहीं और रिटर्न नहीं पहुंचा?
0: आप तो ऐसे सवाल पूछते जा रहे हैं जैसे इस कंपनी के जनरल मैनेजर लगे हों।
3: आखिरी सवाल
0: जी,
3: क्या आप बतला सकते हैं कि इस नौकरी के लिए 40-50 उम्मीदवारों को बुलाकर उनका इंटरव्यू लिए बिना ही वापस क्यों भेज दिया गया, और जिन 2-3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू आपने लिया उनसे आपने कोई काम का सवाल भी पूछा जिससे उसकी काबिलियत का पता चल सकता? जी क्या आप बतला सकते हैं कि आपने मिस जलेबी वाला की सिलेक्शन कैसे कर दी, उसमें कौन सी खूबी है? क्या वो टाइप जानती है? क्या वो शॉर्ट हैंड जानती है?
0: मैं खामोश हूं और आप सर पर चढ़े चले आ रहे हैं। किस उम्मीदवार में कितनी काबिलियत है ये देखना मेरा काम है, आपका नहीं। अब आप यहां से जाएंगे या मैं चपरासी को बुलाकर आपको यहां से निकलवा दूं? राधेलाल
3: ठहरिए ठहरिए, इधर तशरीफ लाइए।
0: मतलब
3: आपने अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया है और इस तरह की सिलेक्शन करके आपने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है।
0: जी
3: क्या अब भी आप अपने को मैनेजर रहने के काबिल समझते हैं? क्यों ना आपको रिवर्ट करके वापस असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाए?
0: ओफो, आप तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर लगे हैं।
3: ठीक पहचाना आपने।
0: जी
3: इधर देखिए
0: सर।
3: जी
0: आई एम सॉरी सर,
3: मैं ही हूँ इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और जिस लड़की यानी कि मिस जलेबी वाला को आपने सिलेक्ट किया है वो मेरी बीवी।
0: आपकी बीवी?

इंटरव्यू। हवा महल में अभी आपने श्री वी एम आनंद का लिखा ये प्रहसन सुना। इसे प्रस्तुत कर रहे थे मुख्तार अहमद।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करेंगे 13B इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है बाबा सहगल, अनुष्का मनचंदा और लॉय मेनोंसा ने। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

ये गीत अभी आपने सुना 13B फिल्म से, और इस गीत में अभिनेता थे आर माधवन, और आज उनका जन्मदिन है तो उन इसी उपलक्ष्य में उनके कुछ गीत हम आज आपको सुनवा रहे हैं। आइए ये अगला गीत सुनते हैं, थ्री इडियट्स फिल्म से आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानन किरकिरे की। स्वानन किरकिरे का ही ये इस गीत को इन्होंने लिखा है और धुन बनाई है शांत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं जोड़ी ब्रेकर्स। इस फिल्म का गीत सलीम मर्चेंट, श्रद्धा पंडित और शादाब फरीदी की आवाजें। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और इस गीत को धुन में बनाया है क्लिंटन सेरेजो ने।

0: साथियों, आज साजिद वाजिद इस संगीतकार जोड़ी के वाजिद खान की पुण्यतिथि है। इस दिन पर हम उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कई गीत बॉलीवुड सिनेमा को दिए हैं और उन्हीं में से एक गीत जो कि काफी प्रचलित भी है, आइए आपको सुनवाते हैं। दबंग 2 फिल्म का एक गीत है, इसे गाया है वाजिद, ममता शर्मा और श्रेया घोषाल ने। जलीस शेरवानी ने इसे लिखा है और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।
1: Ready? 1, 2, 1.

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: और चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए विविध भारती से सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाजें। शब्बीर अहमद के बोल, धुन बनाई साजिद वाजिद ने और फिल्म का नाम पार्टनर।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया करें थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा

0: में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्ल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों

0: और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के

0: दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बज रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के गाए इस गीत के साथ। फिल्म है मुगले आजम और इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

लीजिए सुनिए आराधना फिल्म का गीत आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की शब्द रचना और सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जदनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जदनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जतनबाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। क्योंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके चार बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की दो फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 400।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आह के बाद धुन, पापी और जागती रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गई। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

0: पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।
1: रुक

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

बहाने, इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली, है बस इसी का इंतजार।

0: क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे घर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल है।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत।

0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: श्रोताओं, यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार Yu Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said

श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां केवट से गंगा को पार कराने के लिए अनुनय करते हैं। विस्मित नयनों से केवट श्री राम को निहारते हुए विनती करते हैं, प्रभु तुम तो जग के खेवनहार हो, तुम्हें कौन पार लगाए।